0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
2: 90.8 FM। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।
4: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज, गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। बड़ा ही खूबसूरत गाना है स्वर्ग फिल्म का, गोविंदा साहब के ऊपर वो फिल्म आया गया है, बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई। फिल्म का नाम आता है, गाने का नाम आता है तो जहन में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बन जाती है। पिक्चर बनती है मुंबई, वो गढ़ है जहां लोगों की किस्मत बदलती है, जहां एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, यानी कि सबका एक संगम है। जब इस तरीके से मैंने एक छोटी सी रूपरेखा बना दी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी ही शख्सियत मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है संदीप जी। बहुत बड़ा अनुभव है, आप पेशे से एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और थिएटर एडुकेटर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है जो आगे चलकर अपना नाम कर रहे हैं, इनका नाम कर रहे हैं। तो फाइनली सर, सुरोश यादव 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू सो मच गगन जी, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। सुनो शारदा 90.8 FM के सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक छोटी सी नाचीज हूँ, सेवा में आपके उपलब्ध हूँ।
4: क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई चीज मुझसे छूट ना गई हो, तो यही मैं कहूंगा कि आप प्लीज अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी शुरू हुई।
6: वैसे आपने सब कुछ बता ही दिया है, जर्नी को बताएं तो बहुत बड़ी जर्नी भी है और कह सकते हैं बहुत छोटी जर्नी भी है। जर्नी अभी चल रही है, अभी चलना सीख रहा हूं। वैसे देखा जाए तो 98 में ये जर्नी शुरू हुई थी। मैं अपने पापा के पास देहरादून में था और वहां पर एक एक्टिंग वर्कशॉप चल रही थी। मेरा फ्रेंड मुझे जबरदस्ती खींच के ले गया क्योंकि मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था और छुट्टियों पर आया था। बस वो वर्कशॉप करी और वहां पर एक दिल को एहसास हुआ कि शायद ये वो चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में ताउम्र करना चाहता हूं। बस वहां से मैंने सफर शुरू किया, पहले एक्टिंग को समझा, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, बहुत सारे प्लेस किए, फिर मौका मिला कि मैं NSD की TI कंपनी में जॉब कर सकूं। वहां से मैंने और फाइनेंस टच की सीखे, मैंने इसके नुआंसेस सीखे इसके मैंने, और वहां से मुझे इसकी कला का एक माहीन चीज मुझे समझ में आई और मुझे वहां पर यह भी सिखाया गया कि टीचिंग क्या आर्ट है। बस फिर वहां से मैं मुंबई गया और मुंबई में मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और वहां पर भी मैंने थिएटर किया। मुझे मौका मिला FTI 2004 में, वहां पर फिर से एक्टिंग का कोर्स खुला था
4: पुणे
6: में
4: जी,
6: तो रवि बासवानी जी उस वक्त वहां के डायरेक्टर थे, तो मुझे मौका मिला कि वहां पर हर साल सिलेक्शन प्रोसेस के 4 दिन का वर्कशॉप हम डिजाइन करें और उसको कंडक्ट करें। तो 2004 से लेके 10 तक हम वहां पर हर साल जाते थे। तो बहुत अनुभव हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला. साथ ही साथ मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में बिहाइंड द कैमरा काम किया, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है.
4: जी,
6: तो लाइव शोज, बिहाइंड द कैमरा, थिएटर, टीचिंग, सब चीजें एक साथ चल रही थी. लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था मुझे, क्योंकि मैं सीखना चाहता था. फिर मुझे मौका मिला, मैं तारक मेहता उल्टा चश्मा का क्रिएटिव हेड रहा. जी,
4: क्या बात है.
6: शुरुआती में 2008-2009 में मैं उसका क्रिएटिव हेड था.
4: जी,
6: मैंने उसमें भी बहुत कुछ, एक उसमें जो एक सिंप्लिसिटी थी
4: जी,
6: और उसके जो प्रोड्यूसर है असित मोदी जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे. फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं ये टीवी में कहीं स्टक कर रहा हूँ. मुझे अपनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, बिकॉज वहां पर बहुत चीजें जो हैं एक ढर्रे पे चल रही थी. ये किया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे आगे और अभी सीखना था. तो फिर मैंने वहां से सर को बोला कि मैं निकलना चाहता हूं, तो सर ने मुझे इजाजत दी. फिर मैं वापस थिएटर में आया, क्योंकि मैं
4: थिएटर मुंबई थिएटर में आया या
6: नहीं. मेरे को एक्चुअली क्या हुआ कि एफटीआई पुणे में मिस्टर पेंटल जी मिले थे, वो वहां के एचओडी थे. उन्होंने, मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली से हो तो तुम मेरठ क्यों नहीं आ जाते. मैंने कहा सर मेरठ, अब उस वक्त मेरठ का नाम जब आपके जहन में आता है तो क्या आता था, वहां क्या होगा.
4: वहां क्या होगा, सही कहा आपने,
6: वहां क्या होगा. सर मतलब मैं मुंबई आया हूँ, दिल्ली छोड़कर आप मुझे दिल्ली के पीछे बुला रहे हैं मेरठ. बट उन्होंने बोला कि वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चर खोल रहा है, और एक बार तुम वहां पर आओ देखो
4: जी,
6: अगर तुमको अच्छा लगता है
4: काम करो,
6: काम करो. तो मैं इसी मन से गया था कि
4: देख लेते हैं
6: क्या है, दिल्ली मेरा घर है तो यही सोच के घर चले जाएंगे और आ जाएंगे. लेकिन जब मैं गया और वहां की एनर्जी जो मुझे मिली और जो मैंने स्ट्रक्चर देखा, वहां के लोगों से मिला जो इसके पीछे थे, तो मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नजर आया कि जहां मुझे लगा कि यहां मैं बहुत कुछ कर सकता हूं. तो मैंने सर का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. फिर वहां पर यंग लोग आते थे
4: जी,
6: तो हमारा जो अनुभव है, जो हमने सीखा है, हम उसको आगे रखते थे. और 6 महीने के कोर्स में हम एक फुल लेंथ नाटक भी करते थे और फिल्मों की ट्रेनिंग भी चलती थी, और पेंटल साहब से मैं भी सीखता था. तो उस वक्त मैंने वहां पर बहुत ऐतिहासिक नाटक किए, जो जिंदगी में शायद मैं भी करना चाहता था. मोहन राकेश का आधे अधूरे, या आप कहें कि आषाढ़ का एक दिन, तो ये सब नाटक हमने, अंधायुग, ये सब नाटक हमने वहां नए लड़कों के साथ किए और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करी सबने. बस उसके बाद फिर आगे सफर चलता रहा, मैं फिल्में भी करता रहा. 2016 के बाद मैंने वो वहाँ का सफर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया. फिर फ्रीलांस के तौर पर मैं अब टीचिंग, एक्टिंग, एक्टिंग ट्रेनिंग, सब चीजें करता हूँ.
4: क्या बात है, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है. यूं कहें कि ये जो सफर रहा है माशाल्लाह सुहाना सफर रहा है. इसमें बहुत सारी कहें कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, और हर बात एक कहीं ना कहीं सीख भी देती है. जब आप मुझे अपना परिचय दे रहे थे कि NSDA आप ने किया है, NSDA के साथ साथ मुंबई आप गए, टीवी सीरियल आपने किया, तारक मेहता बहुत बड़ा शो है उसके आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद घर वापसी आपने की, यानी कि बैक टू पवेलियन कह सकते हैं. और जब बैक टू पवेलियन आप हुए तो उसमें भी एक अच्छा सफर आपका शुरू रहा, मेरठ में जो IFTI है उसके आप हेड भी रहे. तो ये जो अनुभव है मैं समझता हूं कि आज हमारे स्टूडेंट्स को काम आने वाला है, जो उस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें, किन किन बारीकियों को वो सीखें, कहां से सीखें, ये सारी बातें हम आप साथ जानेंगे जरूर. सो लिसनर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं संदीप जी, और बहुत सारी बातें इन्होंने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई. तो ये जो अनुभव है हम साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ. We'll be right back.

0: दासा राजेश खन्ना साहब का, और यहाँ डायलॉग मुझे धुंधला धुंधला याद था, तो बस मैंने थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कि अगर आप एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, एक एडिटर बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक स्कूल की, एक विद्यालय की बहुत खास जरूरत होती है। और शारदा विश्वविद्यालय का शारदा स्कूल ऑफ फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक स्कूल है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। और इसी बीच में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक संदीप महाजन, जो कि पेशे से बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रोफेशनली इन्होंने एक विधिवत विद्यालय से शिक्षा लेते हुए मुंबई गए। मुंबई के साथ साथ उन्होंने तारक मेहता के आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद IFTI जो कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट है मेरठ में, आप वहां पर एज अ HOD के पद पर आपने वहां काम किया। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: संदीप सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर किसी का ख्वाब होता है, ये चकाचौंध की दुनिया है कि मैं एक्टर बन जाऊं, लोग मुझे जाने पूछें, मेरे साथ ऑटोग्राफ, मुझसे ऑटोग्राफ लें, मेरे साथ सेल्फी लें। इसके पीछे जो मेहनत है वो शायद लोगों को नहीं दिखती, या दिखती है तो आम भाषा में कहें कि वो चाहते हैं कि हथेली पर सरसों उग जाए। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो मेहनत है, जो संघर्ष है, उसके बारे में आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर अपने अंदर एक आर्ट नजर आता है, पहले उसको पहचानना बहुत जरूरी है, फिर उसके पीछे की मेहनत उस हिसाब से की जाती है।
0: जी,
1: आपको सिंगर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, या आपको एडिटर बनना है, या आपको रेडियो जॉकी बनना है,
0: जी,
1: जैसे कि आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं।
0: थैंक यू।
1: तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत होती है। कभी कभार आप खुद उसको फाइंड आउट करने लगते हैं तो शायद बहुत समय लग जाता है उसको करने में। इसीलिए ये विद्यालय आपको काम आते हैं। जैसे आपने बताया कि शारदा का खुद एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। करते करते आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, बट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि क्रिकेट की दुनिया में होता है, रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन है, वो अपने टाइम पे ना बॉलिंग किया करते थे और उनको बॉलिंग करना पसंद था, वो बैटिंग नहीं करते थे इतनी। तो उनके कोच ने एक बार उनको बैटिंग के लिए ओपनर भेज दिया, तो उस वक्त जो उन्होंने किया वो आज हिस्ट्री बन चुका है। अब वो टॉप के बैट्समैन बन चुके हैं। वो बनना चाहते थे बॉलर,
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि वो एक बेस्ट बैट्समैन है।
0: जी,
1: तो इसी तरह की आर्ट जो आपके अंदर चाहिए, वो मेहनत ऑफकोर्स है, जैसा कि आपने कहा, तैयारी चाहिए, लेकिन उस तैयारी के पीछे आपको जो गाइडेंस चाहिए वो एक टीचर ही दे सकता है।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि खुद को पहचानो।
1: जी,
0: यानी कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ जो आपने बात की, गुरु की जो महिमा है, जो उसकी काबिलियत है कि दूसरों को पहचानना, उसके बाद उस बात को सुने, जाने, समझे, और फिर वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सर, आज के समय में हम देखें कि लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते,
1: समझ में नहीं आता है कि वो अपने ऊपर मेहनत करे क्या। जब आप बोलते हैं ना कि मेहनत करना है, तो वो सोचते हैं कि भाई आप हमें बता दो, हम कर देंगे।
0: मेहनत सुनने को भी राजी नहीं है।
1: नहीं, मतलब आप हमें बता दो, आप हमें बता दो कि हमें ये चश्मा उठा के यहां से यहां रखना है, हम रख देंगे।
0: जी,
1: बट मेहनत वो नहीं है ना। मेहनत सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेहनत ओवरऑल पर्सनैलिटी पे है। आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: अच्छी संगत में आना पड़ेगा, अच्छा देखना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स रखने पड़ेंगे। ये जैसे कि एक कहे कि एक तरह की डेली प्रैक्टिस है, सिर्फ एक दिन का काम नहीं,
0: क्या
1: एक महीने का काम नहीं।
0: बहुत खूबसूरत।
1: ये ताउम्र आपको जिंदगी में रखना पड़ेगा।
0: सर, इसी बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि लोगों का धैर्य टूट जाता है।
1: जी,
0: कई लोगों ने इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत समय दिया है और आज वो अपना काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का जिक्र आता है। NSG से वो पास आउट रहे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब उन्होंने की, छोटा छोटा अभिनय किया, और आज जब वो हम देखते हैं कि वो एक ऐसे मुकाम पर है कि उनका एक उदाहरण दिया जाता है।
1: जी जी।
0: तो लोगों को लगता है कि, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने छोटा सा कोर्स कर लिया और उसके बाद हम मुंबई चले जाते हैं, और समय जब ज्यादा लग रहा होता है, या हो सकता है कि वो उन्होंने अपने आप को पकाया नहीं है, तो फिर लगता है कि नहीं यार, हम ये नहीं कर सकते, मैं इस लाइन के लिए नहीं हूँ। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, कितना धैर्य बहुत जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है धैर्य। देखिए, NSD की मजबूरी है कि वो एक N नंबर ऑफ बच्चे ही ले सकते हैं, एक बहुत बड़ी संस्था

0: है जहाँ से ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, इसी तरह से एफटीआई पुणे है या एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है, अब तो बहुत सारे वेन्यूज खुल गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा, जैसे मनोज वाजपेयी जी ने एनएसडी में 3 बार ट्राई किया, उनका नहीं हुआ,
1: नहीं हुआ,
0: आज वो भी तो सफल एक्टर है।
1: सफल एक्टर, सही बात है
0: कि नहीं? उन्होंने अपने आप को खुद तैयार किया है। उनको एक उनके गुरुजी मिले, वो दिल्ली के रहने वाले नहीं है, वो दिल्ली शहर में आए, उन्होंने अपनी मेहनत करी, पकाया और वहां से उठा के उनको ले गए शेखर सुमन जी। याद है उनकी पहली फिल्म शेखर सुमन जी के साथ जो उन्होंने करी थी, और उसके बाद रामू जी ने वो फिल्म देखी और उस फिल्म के 4 साल बाद मनोज वाजपेयी रामू सर से मिले और रामू सर उनको 4 साल से ढूंढ रहे थे। कमाल की बात है ना। और उनके सामने बैठे रामू सर उनको पहचान नहीं पाए कि मैं तुमको ढूंढ रहा हूं, वो करेक्टर इतना जबरदस्त किया था उस फिल्म में उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि आप अपने आप को तैयार, डेफिनेटली हमें गाइडेंस की जरूरत है कि तैयारी कैसे की जाए, लेकिन आज वेन्यूज बहुत खुल गए हैं, आज यूट्यूब का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, आपके लिए पढ़ने के लिए सामने सब कुछ रखा हुआ, लेकिन हम देखते क्या है? रील्स।
1: सही बात है। रील्स।
0: तो आप जब रील्स देख रहे हैं और फेसबुक को स्क्रॉल करे जा रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है?
1: जी,
0: चीजें आगे करते जाओ, बस आगे करते जाओ, बस आगे करते, ठहराव और धैर्य खत्म।
1: क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि दोस्तों जिस तरीके से एक आंसर की उम्मीद थी, बहुत खूबसूरत सर ने जवाब दिया है कि ठहराव, यानी कि जिस तरीके से हम बोलते हैं वहाँ पॉज की बात होती है और जिंदगी में ठहराव की बात होती है, यानी कि सोच के समझ के एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि यहां मेरी कोई कमी पेशी रह गई है तो निश्चित तौर पर जो आपके टीचर रहे हैं, जो उस्ताद रहे, उनसे जानिए, समझिए, अपनी कमी को खूबी में तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर फतह आपकी जरूर होगी और आपकी मंजिल आपको मिलेगी जरूर। और क्या है खास जानेंगे जरूर संदीप महाजन जी से, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। ये सारी बातें हो रही हैं सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं संदीप महाजन जी, जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर एडुकेटर हैं, और बहुत समय इन्होंने इंडस्ट्री में दिया है, अपने आप को तपाया है, अपने आप को झोंका है, और उसके बाद इंसान एक कहते ना कि बनकर निकलकर निखरकर सामने आता है। राह से भटकना इंसान को, मैं समझता हूं कि पीछे लेकर चला जाता है, और राह पर चलेंगे, समय देंगे, जिसके बारे में सर ने एक एग्जांपल दिया मनोज वाजपेयी का, जिक्र मैंने किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का, कि उन्होंने अपने ऊपर समय लगाया, एक रास्ते पर चलते रहे, मेहनत की, वर्क अपने ऊपर किया, तब जाकर वो आज अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सर, जो लोग भटक जाते हैं, जो अभी आप और हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे, उनको लगता है कि मैं एक्टर बनने आया था, एक्टर में मेरा कुछ हो नहीं रहा, एडिटिंग कर लेते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, तो ये जो लाइन चेंज करते हैं लोग बाग, ये कितना सही है कितना गलत है?
1: देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मुंबई शहर जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने आती है वो है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के तौर पर बहुत सारे एक्टर बहुत पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए फिर वो फील्ड चेंज करते हैं, क्योंकि उनको वहां सरवाइव करना होता है। एक तरह से कहें इसमें कुछ अच्छा भी होता है, और एक तरह से कहें कि कुछ चीजें पीछे भी रह जाती हैं। जब कुछ वो और चीज ढूंढते हैं तो उसमें उनको एक नई चीज मिलती है, कि इसमें लगता है कि हाँ, ये चीज तो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूं
0: जी,
1: तो वो चीज वो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप थोड़ा ब्रेक लें, आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, यानी कि उस शहर से बाहर निकले। क्योंकि मेरा मानना यह है, एक्टिंग सिर्फ बॉम्बे में नहीं होती है।
0: क्या बात,
1: आप इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वेन्यूज बहुत बड़े हैं, सिर्फ इंडिया में एक्टिंग नहीं होती है, इंडिया से बाहर भी एक्टिंग होती है। एक लिमिटेड साधन फिल्म नहीं है, वेब सीरीज नहीं है, अगर वाकई में आपको एक्टिंग करनी है तो आप अपना छोटा मोटा थिएटर ग्रुप खोल के भी एक्टिंग कर सकते हैं। आपको एक्टिंग से प्यार है कि नहीं है, सवाल ये है।
0: क्या बात, जो आधार है, एक्टिंग
1: आधार है। आपके मन में अगर ये बात आ गई कि यार इसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता,
0: है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
1: तो आप रास्ते निकालेंगे।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिक्र आता है कि थिएटर का, रंगमंच का, मैं समझता हूं कि रंगमंच से अगर आप निकल कर गए हैं तो निश्चित तौर पर आप एक सशक्त अभिनय कर सकते हैं और मजे हुए कलाकार हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि बहुत शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, टीवी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, सगे संबंधी किसी के हैं, उन्होंने रंगमंच किया नहीं है, थिएटर किया नहीं है, तो हम एज अ दर्शक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। एज अ टीचर आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में, उन लोगों के बारे में जो रंगमंच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बिना रंगमंच के, बिना थिएटर के काम कर रहे हैं?
1: देखिए, सब काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है,
0: काम कर रहे हैं, सही बात है।
1: और देखिए, जिनको प्यार है वो जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना एक सीखने का दायरा बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जो टीवी में काम कर रहे हैं वो अच्छे एक्टर नहीं, काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, और कुछ टाइम बाद काम करने की फिर वो काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अंदर से खुशी नहीं मिलती है उनको।
0: तो यानी कि आप सीधे लफ्जों में अगर हम कहें तो मैं समझता हूँ कि पहले अपने आप को तपाना बहुत जरूरी है। आपने, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि अगर आप टीवी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करते करते सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कुछ लोग तो ताउम्र गुजर जाती है, सीखते ही नहीं है, और दर्शकों को उनका अभिनय पसंद नहीं आता, इसलिए चल रहे हैं कि आपके सगे संबंधी इंडस्ट्री में आपको सिर्फ काम मिल रहा है।
1: जैसे कि आप इस प्रोफेशन में हैं, आप जब रात को सोते हैं तो एक अच्छी नींद सोते होंगे कि मैंने आज जो काम किया उस प्रोसेस को आप एंजॉय करते हैं
0: जी।
1: तो इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना तो काम सीखेंगे आप जरूर, आप रोज सीखेंगे। लेकिन आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे।
0: क्या बात है। सो लिसनर्स, कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है, सर का आशय यही है, आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, निश्चित तौर पर कोशिश मेहनत के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो रुपया आपके पीछे पीछे आएगा, जो कि जरूरत है, नो डाउट रुपया आएगा, एक न एक दिन आपको रुपया मिलेगा और आपको आपके काम से जाना जाएगा, काम होगा तो निश्चित तौर पर दाम भी आपको मिलेगा जरूर, और वक्त ये आता है कि मुंह मांगी कीमत आपको मिलती है, और डायरेक्टर देते भी हैं। तो इसलिए बस अपने आप को तराशिए, अपने आप को तलाशिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या रेडियो जॉकी बनना है। शारदा विश्वविद्यालय भी आपको ऐसी कोर्स ऑफर करता है। और बस यही कहूंगा कि अगर आप इधर उधर कहीं भी यहां आना चाहते हैं तो यहां का माहौल देखिए, फैकल्टी से मिलिए, लोगों से मिलिए, प्लेसमेंट के बारे में जानिए। और जब इस तरीके के गेस्ट हमारे यहाँ विजिट करते हैं, संदीप महाजन जी जैसे जो कि खुद का अपना एक थिएटर ग्रुप भी चलाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे जरूर। सो बस कहूंगा सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जानी, न ढाल से न तलवार से बंदा डरता है, तो सिर्फ परवरदिगार से।
1: सर हमने भी अभिनय की जब दुनिया में आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा मिमिक्री मैं भी कर लेता हूँ। अभिनय तो नहीं है लेकिन हाँ नो डाउट यहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है। अभिनय हम जरूर सीखना चाहते हैं और जो बारीकियां आपने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई है, वो बारीकियां मैं भी अपनी जिंदगी में ध्यान रखूंगा। लिसनर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदीप महाजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। NSD से आप पास आउट रहे हैं और IFTI पुणे से भी आप पास आउट हैं। तारक मेहता का एक क्रिएटिव हेड के तौर पर आपने वहां काम किया, फिर आप एज ए डायरेक्टर IFTI जो कि मेरठ में एक इंस्टीट्यूट है सर, वहां पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। क्योंकि वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो हमें लेनी होती है अनुमति और एक सारांश निकालना होता है, एक निष्कर्ष निकालना होता है, ये चर्चा हमारी कैसी रही और हम आपकी तरफ से एक संदेश जानना चाहते हैं। लेकिन सर बिफोर संदेश, बिफोर मैसेज, मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि इंडस्ट्री जिस तरीके से हमें दिखती है बहुत साफ सुथरी, ऐसा है भी नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं कि शोषण भी कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, लड़के भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं सुसाइड कमिट कर लेते हैं, हताशा भी है, परेशान भी है। तो इस तरीके के माहौल से कैसे वो अपने आप को बचाकर आगे बढ़े। कल परसों मैं एक सुन रहा था, उपासना सिंह जी जो कि बहुत बड़ी एक्टर रही हैं, कहती हैं कि मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि मुझे आपसे फेवर चाहिए और वो फिल्म को उन्होंने ठुकराया, अनिल कपूर के साहब के अपोजिट वो फिल्म थी, और वो कहती हैं कि काश मैं, मेरे साथ वो हादसा ना होता तो मैं आज अनिल कपूर की एक्टर होती। हादसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि कुछ गलत आशा की गई थी उनके साथ, गलत काम की उम्मीद की गई थी, जिसको मैं यहाँ अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रख रहा हूँ। तो मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि किस तरीके से एक इंसान अपने आप को आगे लेकर जाए और इस माहौल से कैसे बचाकर वो अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करे।
2: देखिए सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूं, मैंने NSD की TI कंपनी में जॉब किया था
1: जी,
2: रेपेटरी कंपनी है उनकी
1: जी,
2: उसमें मैं जॉब करता
1: जी, जी जी।
2: अब आपकी बात पर आते हैं, देखिए ये आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है
1: जी,
2: मैं क्या करने आया हूँ, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। शॉर्टकट वही लेता है जिसको अपना रास्ता खुद निकालना नहीं आता है या जो अंदर से कमजोर होता है। उस वक्त जरूर आपको यह लगता है कि मैं इसका एक्टर होता हूं, मैं उसका एक्टर होता और मैं इसका एक्टर होता। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना रास्ता खुद निकालिए। आपको बुरे लोग मिले हैं तो अच्छे लोग भी मिलेंगे
1: जी,
2: पेशेंस रखिए। यह आपका निर्णय है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। जैसा कि आपने उनका उपासना जी का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने वो छोड़ा, वो उनका फैसला था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं उनको रिग्रेट नहीं होगा कि उन्होंने वो नहीं किया। अनिल कपूर नो डाउट खुशी होती उनके साथ काम करते, लेकिन इस कीमत पे काम करना
1: सही का किसी को गवारा नहीं है।
2: अगर उनको गवारा नहीं है, ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। डिसीजन आपका है, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता है, आपको कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता, आपके सामने एक ऑफर रखते हैं। ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। ये आप पे निर्भर करता है, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, जिंदगियां खत्म नहीं हो जाती है।
1: क्या बात है। हाँ हम तो हिल गए क्योंकि ऐसा भी होता है, ये जानना समझना बहुत जरूरी था और आपने वाकई बखूबी इस सवाल का एक आंसर रखा कि जिंदगी के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन इंसान को सोच के समझते हुए आगे बढ़ना है और अपना भी ख्याल रखना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है।
2: बिल्कुल सर, जैसे कि मेरा खुद का अपना थिएटर ग्रुप है,
1: प्लीज बता रहे
2: हैं थिएटर स्टूडियो करके।
1: हाँ
2: ये ग्रुप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर के तौर पे क्लासेस नहीं लेता हूँ। मैं अपने इस आर्ट को आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, जो मैंने इतने सालों में एक गुण सीखा, क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो इस कमी ये कमी मुझे महसूस होती थी कि कोई आकर मुझे बताए कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, लेकिन किसी के पास समय नहीं होता था। तो वो कमी मैं, मेरे को महसूस होता है कि मैं जितनों को दे सकता हूं मैं दे दूं। तो मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, मैं मुझसे कहते हैं कि सर मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले मैं उनके अंदर झांकने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई में वो एक्टर बनना चाहते हैं
1: जी,
2: या सिर्फ वो फेम की वजह से आ रहे हैं।
1: शौकिया जी,
2: ये भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक्टर की जिंदगी में 24 घंटे मेहनत है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं स्टूडेंट्स को जो आप तराशते हैं, निखारते हैं, ये जो सिलसिला है निरंतर चलता रहे। और आपका संपर्क सूत्र नंबर यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए जो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकें, तो आप प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि वो थिएटर करें, आपके पास आए, आपसे सीखें।
2: जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9968135423। इंस्टाग्राम में अकाउंट है कैमरा एंड थिएटर स्टूडियो के नाम से ही। और साथ ही साथ मैं जाऊंगा कि मैं शारदा जी के साथ भी जुड़ूं, उस यूनिवर्सिटी, इस फिल्म स्कूल के साथ भी जुड़ूं, और इस आर्ट को अगर मैं किसी भी तरह क्या आगे दे सकता हूं तो मैं देना चाहूंगा।
1: बहुत खूबसूरत सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। और यही मैं जानना चाह रहा था कि शारदा विश्वविद्यालय का जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रख दी कि आप यहां से जुड़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप जैसे टीचर जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने तरफ से बहुत कुछ हीरो को निकाल कर लेकर आ पाएंगे और जो कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। जी हाँ, अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय का फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल आपका बाहें फैलाए इस्तकबाल करता है, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा संदीप महाजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें आपने कही। जी प्लीज, कुछ कहना
2: चाहते हैं? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं या आप हीरो बनना चाहते हैं, एक्टर कैरेक्टर के अंदर फाइंड आउट करता है। फिल्म करेक्टर से बनती है, हीरो से नहीं, क्योंकि हीरो की जिंदगी बहुत छोटी होती है।
1: क्या बात है, ये देखिए देखिए ये छोटी छोटी बातें लिसनर्स, जो अगर आपने इन बातों को गांठ बांध लिया तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आप आए, लिसनर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके।
1: थैंक यू सर, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं और बस यही कहता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: प्ले, क्या बात है।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:16 हो चुके हैं, 7 तारीख है, हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। दिल्ली NCR में बारिश झमाझम बारिश हो रही है, इस बारिश का लुत्फ उठाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और धीरे धीरे स्लोली स्लोली गड्डी को आगे बढ़ाएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी न हो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी

0: बेगम।
1: बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
2: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
3: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
2: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
3: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
2: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनूं शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आवन जावन में थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको महसूस हो सकती है। ऐसे समय में हर रोज मैं आपको अप टू डेट रख रहा हूं, यानी कि जल भराव की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से गड्ढे हमें नजर नहीं आते और सड़कों पर गड्ढे होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, खास बात यह कि सीवर के ढक्कन खुले हैं। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि वहां दुर्घटना घट सकती है। और जो बिजली के पोल्स हैं, शटर हैं या कुछ और, ऐसे समय में इनसे दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि करंट यानी कि कहीं पर भी उतर सकता है। और जब बिजली का करंट आता है तो ये सच है कि जाने अनजाने में जनधन की हानि हो जाती है। फिलहाल दिल्ली NCR का जो मौसम है, मॉनसून सक्रिय है, आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन भर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जो संभावनाएं हैं। तापमान 27 डिग्री से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और बस बहुत सोचकर, समझकर, संभलकर घर से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे समय बिल्कुल अवॉइड करेगा ट्रैवल करना। बस आप फोन पर काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। वो अपडेट हमारे सामने, क्योंकि कांवड़ यात्रा प्लस बारिश, इसके बारे में क्या अपडेट है जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। लेट्स एंजॉय इट, ऑल योर सुरशादा 90.8 FM।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। जनाब मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका दिन शुभ में गुजरे, मंगल में गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:33 हो चुके, 7 तारीख है, बोले तो फ्राइडे का दिन। कहीं ना कहीं दिल दिमाग में ये है कि आज शाम को घर जाएंगे और कल है सैटरडे, फिर है संडे और फिर है मंडे, यानी कि 2 दिन की जो छुट्टियां हैं उसको अच्छी तरीके से आपको गुजारिएगा, लेकिन ऑन रोड मत आएगा, बिल्कुल भी मत आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई जन धन हानि ना हो, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको अगर हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हमें हो सकती है, क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई हमने आपको अपडेट नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको हमेशा अप टू डेट रखते हैं। फिलहाल मौसम की जो अपडेट्स निकल कर सामने आई वो बातें हमने आपको बता दी, लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि यानी कि ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है बारिश और दूसरी तरफ है वाटर लॉगिंग और तीसरी तरफ है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। ऑन रोड जब आप चल रहे हैं तो कांवड़ यात्रा को आपकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। फिलहाल बात कर लेते हैं ट्रैफिक अपडेट की। इंडिया एक्सपो मार्ट से जो वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है 5 से लेकर 8 अगस्त के बीच एक्सपो मार्ट गोल चक्कर के आसपास जो रूट है उसको डायवर्जन पूरा लागू रहेगा और गलगोटिया कट से आने वाले व्हीकल को शारदा गोल चक्कर एलजी गोल चक्कर से होकर वहाँ से भेजा जा रहा है। और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए जो कॉमर्शियल व्हीकल है जिसको हम कहते हैं वाणिज्यिक वाहन के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर 11 अगस्त 2026 तक जो डायवर्जन है लागू रहेगा और चिल्ला रेड लाइट से पुष्ता विहार गेट तक मार्ग बंद रहेंगे। और बस कुल मिलाकर सोचकर समझकर ऑन रोड चलेगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। गुरुग्राम में क्या किया गया है, वर्क फ्रॉम होम है या स्कूल की जो अपडेट्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में तो बिजुरिया गिरती है, सरी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुर शारदा 90.8 एफएम, सोनू निगम और असिस कौर की आवाज सिर्फ सुर शारदा 90.8 एफएम पर।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: इस पंजाबी ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आसपास क्या खास है। 9:44 हो चुके हैं, 7 तारीख है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि बारिश के मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बारिश की जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, यानी कि जल भराव की जो स्थिति है, वाटर लॉगिंग की जो स्थिति है, ऑन रोड गड्ढे हैं या गड्ढे हमें नजर नहीं आते, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में अपडेट दिल्ली NCR की अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि जो मूसलाधार जो बारिश हुई है, जिसको देसी भाषा में हम सुनते आ रहे हैं मूसलाधार बारिश।
1: सवाल ये मैं पूछता हूँ,
0: मतलब
1: पूछता है कि भारत मूसलीधार बारिश क्यों नहीं होती? नहीं नहीं, फिर तो धारी लगाओ। हाँ, दो धारी की तलवार की तरह मूसलीधारी बारिश।
0: तो खैर, इस बारिश की वजह से कालिंदी कुंज, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, शास्त्री पार्क और NH 48 पर व्हीकल की जो गति है, जो स्पीड है, वो थोड़ी स्लो है। और गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम यानी कि WFH वर्क फ्रॉम होम भारी बारिश वहां पर दर्ज की गई है, यानी कि 97 मिलीमीटर से अधिक। और ऑरेंज अलर्ट के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने आज जो प्राइवेट ऑफिस है, जो निजी दफ्तर है, वहां वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो सके। स्कूल की अपडेट निकलकर यह सामने आ रही है कि कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्रतिबंधों के चलते गाजियाबाद प्रशासन ने नर्सरी से लेकर 12वीं तक यानी कि कक्षा 12th तक के जो सभी स्कूल हैं, कॉलेजेस को 12 अगस्त 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने किसी खास को अपडेट कर सकते हैं कि भैया ये सारी चीजें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: प्रोडक्शन बाय रॉनी। Let's enjoy it. All your Suno Shada 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ब्यूटिफुल ट्रैक। म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसिरोलियो, सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी, लिरिक्स वायु श्रीवास्तव।

0: हवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: बिक्सबा
1: टच बॉडी क्या बात है ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ जॉनी तागादी पवन सिंह की आवाज में वायु के बोल भीम का म्यूजिक सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर।
2: अजी कब तक बजता रहेगा?
1: हो गया। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक ऐसे खास विषय पर, गंभीर मुद्दे पर।
2: तो गंभीर मुद्दा है तो गंभीर होना जरूरी है।
1: नहीं, मुझे लगता है कि उसकी भी एक मान मर्यादा है कि जो जैसा सब्जेक्ट है उसके साथ आप

0: ऐसी ही बातें करें, तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कंटेंट की बात करते हैं, हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं, हम व्यूज की बात करते हैं। इससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि एक फिल्म आई थी कि लव के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन आज के समय में हाँ व्यूज के लिए कुछ भी करेगा, व्यूज के लिए न्यूज में आने के लिए कुछ भी करेगा। और ऐसे समय में सच बात तो ये कि जब हम सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हैं, अलग अलग कमेंट्स आते हैं, राय आती हैं, प्रतिक्रिया आती हैं कि फ्री में तमाशा देखने को मिलता है।
1: हाँ ये बात भी सही है।
0: लेकिन ऐसे में आपकी जो मान मर्यादा है, जो आपके दायरे हैं, जो आपकी निजी जिंदगी है, जो आपके रिश्ते हैं, जो पारिवारिक चीजें हैं, उनका आप तमाशा ना करें। ये कैसी अपडेट हमारे सामने आ रही है, इसके बारे में आपको हमेशा अप टू डेट रहने की बहुत ज़रूरत है कि अप टू डेट जब आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। अब एक खबर को जब मैं पढ़ रहा था कि मुझे लगा कि भ्रामक खबरें तुरंत हटाने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा डिजिटल कंटेंट को तुरंत हटाने, इसमें मैं अपने शब्द नहीं रख रहा, जो लिखा है वही मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं कि 3 महीने के भीतर कोर्ट के फैसलों को लेकर ये नियम, बड़े नियम जारी कर दिए गए कि 3 महीने के अंदर वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। ये पहले कुछ ऐसी बातें थी, तो आने वाले समय में ये बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की तुरंत रोक है, जो गलत कंटेंट है उसको तुरंत हटाने की बात कही गई है। पहले 3 महीने की बात होती थी, लेकिन अब जो अवैध डिजिटल कंटेंट हटाने की जो समय सीमा है वो घटाकर 3 घंटे कर दी गई है। मुझे लगता है कि इसको और जल्दी गिराने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 घंटे में बहुत बहुत चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो इसके बारे में हमें आगे और सोचना होगा, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छा कंटेंट आगे प्रेषित करें। और सरकार अपना काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा कदम उठाया, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। बस हम अपनी मान मर्यादा के साथ आगे बढ़ें और दूसरों का ख्याल रखें ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अदरवाइज सच यह है, यकीन मानिए कि बहुत जल्द
1: मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया,
0: वो बहुत जल्दी घटेंगे और व्यूज भी आपके घटेंगे। इसलिए अच्छा कंटेंट जरूर आगे प्रेषित करिए। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

गच लागे, म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर, लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरुषा द 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

क्या बात है, क्या बात है। इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं लेता हूँ अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। म्यूजिक एक ऐसा जरिया जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, बस मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यारी गगन के साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
7: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आरजे गगन। आज का एपिसोड उन महिलाओं के लिए खास उपयोगी है जो मातृत्व की तैयारी कर रही हैं या यूं कहें कि गर्भावस्था के सफर में हैं। श्रोताओं, एक स्वस्थ माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। आज हमारे साथ टीकन भाभी हैं, वो बताएंगी कि गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान पोषण कितना जरूरी है, साथ ही सही खानपान से हम माँ और बच्चे दोनों का भविष्य कैसे संवार सकते हैं। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, आजकल बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन अक्सर वे नहीं जानती कि गर्भधारण से पहले सही खानपान कितना जरूरी होता है या प्रेगनेंसी से पहले पोषण का क्या रोल होता है।
8: नमस्कार आरजे, और आपके श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जब कोई महिला माँ बनने की सोचती है तो उसका शरीर पहले से ही तैयार होना चाहिए। तो जिस विषय पे आप मुझसे बात कर रहे हैं या जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, ये इतना ज़रूरी है हर एक उस महिला के लिए जो कि माँ बनने के लिए खुद को तैयार कर रही है। तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरा कहने का मतलब है कि शरीर में ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स और ताकत होनी चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और माँ को भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अक्सर जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है तो सबसे पहला जो असर है उसके अपने शरीर पे पड़ता है, तो उसके अपने शरीर में भी ताकत होनी चाहिए। नए जो है, जो आपका नया फेज जो ज़िंदगी का शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप तैयार होने चाहिए। जैसे फोलिक एसिड गर्भ में बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन भी बहुत जरूरी होते हैं ताकि शरीर हमारा मजबूत बना रहे। और हाँ, जंक फूड से परहेज करना चाहिए और जितना हो सके ताज़ा फल, सब्जियां, दालें वगैरह ज्यादा खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी की तैयारी सिर्फ मन से नहीं, हमें शरीर से भी करनी होगी।
7: क्या बात है टीकन भाभी, जिस अनुभव के साथ आप बात कर रही हैं, आपके अनुभव को वाकई मैं सलाम करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा खजाना है और यही सारी जानकारी हमारे श्रोता, खासकर वो महिलाएं सुनना समझना चाहती हैं जो इस दौर से गुजर रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो दौर है बड़ा ही खूबसूरत लम्हा होता है और इस लम्हे को हम सबको जीना चाहिए, फैमिली का ख्याल रखना चाहिए और खासकर उस गर्भवती महिला का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो जननी है। भाभी, अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने की। बहुत सी महिलाएं इसको लेकर उलझन में रहती हैं, आप बताइए कि गर्भावस्था में वजन कितना बढ़ना चाहिए?
8: देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, आपने जो एहसास की बात की है ना, ये हर एक महिला के लिए बहुत ही खूबसूरत और एक यादगार एहसास है। तो वो चाहती है कि जितना पॉसिबल है, जितना संभव है, वो इस 9 महीने की जो यात्रा है उसकी और ज्यादा उसको यादगार बनाए। लेकिन उसको यादगार बनाने के लिए आपको एक सही तरीके से यादगार बनाना जरूरी है, ताकि आप जो है वो खुशनुमा माहौल में जो है उसको याद करें। तो जैसे वजन की हम बात कर रहे हैं, तो वजन बढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत सही मुद्दा मैं कहूंगी आपने उठाया है, क्योंकि पूरे 9 महीने में महिला का जो वजन है करीब 10 से 12 किलो तक बढ़ना चाहिए। आपने कुछ महिलाएं देखी होंगी जिनका ज्यादा वजन नहीं बढ़ता, और बाहर उनके शरीर को देख के पता भी नहीं चलता है कि वो उन्होंने गर्भ धारण किया भी है या नहीं किया है
7: जी।
8: तो लेकिन ये एक तरीके से अच्छे स्वास्थ्य की भी निशानी नहीं मानी जाती। 4वें महीने से हर महीने तक लगभग 1.5 से 2 किलो वजन बढ़ना सामान्य माना जाता है। ये वजन बच्चे की ग्रोथ, माँ के शरीर की जरूरतों और गर्भ में पानी वगैरह की वजह से बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि वजन बहुत ज्यादा या बहुत कम भी ना हो। यानी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ही जो है वो वेट गेन कर ले, ज्यादा खाना शुरू कर दें। अक्सर कहा जाता है कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, उनकी एक कुछ थ्योरी होती थी कि अब आप 1 के लिए नहीं 2 के लिए खा रहे हो, तो 2 इंसानों की जरूरतों के हिसाब से खाओ। 2 के लिए खाने का मतलब ये नहीं है कि आप भोजन की जो मात्रा है वो 2 व्यक्तियों की है। मात्रा 2 की नहीं होनी चाहिए, भोजन में जो पोषक तत्व है वो 2 लोगों के हिसाब से आपको खाने हैं।
7: Nice.
8: तो अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वजन बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। और इसके अलावा जो है आपको हर महीने आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर अपना वजन जरूर कराना है, ताकि आपको पता रहे कि मेरे वजन का क्या इस समय पे क्या स्टेटस चल रहा है, और वहीं से आपको सही गाइडेंस भी मिलती है, तो उसी के अनुसार आप समय समय पे जांच भी करा सकते हैं।
7: वेरी गुड। ठीकन भाभी, अक्सर सुनने को मिलता है कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, जो कि आपने बताया। आपकी इस जानकारी को मैं वाकई फिर से दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि एक अच्छे अनुभव के साथ आप आती हैं। जाहिर सी बात है कि आपके घर में भी एक नन्ना मुन्ना है, और मुझे लगता है कि हर एक महिला को ये अनुभव आने वाली जनरेशन को साझा करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? गर्भवती महिला को दिन भर में क्या क्या और कितना खाना चाहिए?
8: जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिन में 3 बार का जो भोजन है वो आप अपने समय पे करें, क्योंकि 3 बार के भोजन के साथ आपको दवाइयां भी लेनी होती हैं। तो यानी आप अगर समय पे भोजन करेंगे तो समय पे आप अपनी दवाइयां भी ले पाएंगे, और 2 बारी हल्का पौष्टिक नाश्ता भी आपको करना चाहिए। जैसे सुबह के नाश्ते में आप गुड़, चना, भुनी हुई मूंगफली, लैया चना या रागी के लड्डू बहुत अच्छे रहते हैं, वो खा सकती हैं। ये चीजें ताकत देती हैं और बच्चे की ग्रोथ में मदद करती हैं। खाने में थोड़ा अतिरिक्त तेल या घी भी होना चाहिए, ताकि शरीर को जरूरी ऊर्जा मिले, क्योंकि आपको ऊर्जा की भी जरूरत होती है ऐसे समय पे। और आंगनवाड़ी केंद्र से जो पोषाहार मिलता है उसे जरूर लेना चाहिए, बताई गई मात्रा के अनुसार ही सेवा करना चाहिए, और ये खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए तैयार किया गया होता है। तो कुल मिलाकर खाने में स्वाद भी होना चाहिए और सेहत भी।
7: ठीक है भाभी, गर्भवती महिलाओं में वजन को लेकर अक्सर चिंता रहती है, कुछ का वजन कम होता है तो कुछ का ज्यादा। ऐसे में खाने पीने का ध्यान कैसे रखा जाए?
8: देखिए, हर महिला का शरीर अलग होता है और उसी हिसाब से उसे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। अगर महिला का वजन कम है तो उसे दिन में कम 1 बार ऐसा नाश्ता जरूर करना चाहिए जिसमें ताकत हो, जैसे तिल के लड्डू, मुरमुरा या बेसन के लड्डू, मूंगफली, गुड़ पट्टी, क्योंकि अभी तो आगे सर्दियों का समय भी आ रहा है आगे
7: जी,
8: तो
7: जी।
8: ये गरिष्ठ भोजन भी इसको कहा जाता है, तो ये शरीर को गर्मी भी आपको प्रदान करेंगे। और लावा, सीरा वगैरह ये सब आप ले सकती हैं। ये चीजें शरीर को ऊर्जा देती हैं और बच्चे को ग्रोथ में मदद करती हैं। अब अगर किसी महिला का वजन पहले से ही ज्यादा होता है तो उसे थोड़ा हल्का और संतुलित खाना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, हल्की दालें और साबुत अनाज में बाजरा और रागी ले सकते हैं। दूध पीना है तो बिना मलाई वाला पिए, ज्यादा मलाई वाला जो है आप अवॉइड करें
7: जी।
8: और चीनी का सेवन कम करें, इससे वजन भी कंट्रोल में रहेगा और पोषक भी पूरा मिलेगा। अब चीनी की जैसे मैंने बात कही, कम करना है तो चीनी को कम करने के लिए कुछ महिलाओं को जो है गर्भावस्था के दौरान शुगर की की क्रेविंग होती है, मीठा खाने की इच्छा,
7: यानी कि इच्छा होती है,
8: इच्छा होती है। तो इस इच्छा को पूरा करने के तरीके हैं कि चीनी के बजाय जो है आप गुड़ का प्रयोग कर सकती हैं, गुड़ की चाय बना सकती हैं, और खांड बूरा ये हमारे जो कुछ जो खाद्य पदार्थ है जो हमें हमारे गाँव की हम नेमत कहेंगे कि हमें मिले हैं, तो उनका प्रयोग करके आप मिठास का भी अनुभव कर सकती हैं और सेहत का भी ध्यान रख सकती हैं।
7: बहुत खूबसूरत बात आपने कही। टीकन भाभी, अब बात करते हैं उस पोषण की जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे के विकास और माँ के वजन को सही तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। रोजाना खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए?
8: गगन जी, गर्भावस्था में बच्चे का विकास और माँ की सेहत दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो क्या खा रही है। रोज के खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है। जैसे गाढ़ी दालें, फलियां, सोया, दूध, दही, पनीर, चने, मूंगफली और अंकुरित अनाज, ये सब चीजें शरीर को ताकत देती हैं और बच्चे के अंगों के विकास में भी इनसे मदद मिलती है। अगर परिवार मांसाहारी है तो खाने में अंडा या थोड़ा सा मीट भी शामिल किया जा सकता है, इससे प्रोटीन की मात्रा और भी अच्छी हो जाती है। अब बात करें आयरन की, तो बहुत सी महिलाओं को खून की कमी हो जाती है जिससे थकान रहती है और बच्चा भी कमजोर हो सकता है। इसके लिए विटामिन सी से, क्योंकि देखिए मैं बात आयरन की कर रही हूँ, लेकिन आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। यानी अगर आप आयरन का सेवन करना चाहती हैं तो आयरन का जो आपके शरीर में जो प्रोसेसिंग है, जो कंजम्पशन है, वो विटामिन सी से बहुत जुड़ा हुआ है। अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगी तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा शरीर में। तो इसके लिए विटामिन सी से भरपूर फल जैसे अमरूद, नींबू और संतरा, भी बहुत अच्छा संतरा भी आपको खाने को मिलेगा, सीजन है, और मौसमी फल खाने चाहिए। साथ ही दालें, फलियां, चना और मूंगफली भी आयरन के अच्छे स्रोत हैं। आयरन की गोली

0: से भरपूर चीजें होनी चाहिए।
1: बहुत अच्छी बातें हमारी टीकन भाभी श्रोताओं आप तक पहुंचा रही हैं, तो दिल से शुक्रिया टीकन भाभी आपका, क्योंकि आप जितनी जानकारियां दे रही हैं, मुझे लगता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, निश्चित तौर पर आम जिंदगी में अमल में लेकर आएंगी। टीकन भाभी, अक्सर महिलाएं यही सोचती हैं कि रोटी, चावल और दाल ही काफी है, लेकिन आपने पहले भी कहा था कि गर्भवती महिला को अपने आहार में विविधता
0: लानी चाहिए।
1: सही पकड़ लिया टीकन भाभी, जिंदाबाद। तो जरा ये बताइए कि रोज के खाने में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए।
0: हम जब गगन जी विविधता की बात करते हैं, तो विविधता रंगों में होनी चाहिए। विविधता जो है खाने के प्रकार में, कि वो ठोस भी है, वो हल्का भी है, वो देखने में कई बार सुंदर भी है और कई बार सुंदर नहीं भी है
1: जी।
0: तो ये विविधता बहुत जरूरी है, और गर्भवती महिलाओं का जो खाना जितना रंग बिरंगा और पोषक होगा, उतना ही खाना अच्छा रहेगा। जैसे रोटी, चावल, दाल और मौसमी सब्जी तो जरूरी है ही, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीजें रोज के खाने में शामिल करनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चौलाई, मेथी, पालक, जिनसे कि साग बनता है, हम लोग सर्दियों के मौसम में बनाते हैं, ये शरीर को आयरन और फाइबर देते हैं। फिर पके हुए रंगीन फल जैसे आम, गाजर और कद्दू जैसी सब्जियां भी बहुत फायदेमंद होती हैं। दही और मट्ठा भी रोज के खाने में होना चाहिए, लेकिन इनको सिर्फ दिन के समय में लें, शाम के समय में यानी लगभग दोपहर के 2 बजे के बाद जो है इनको लेना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इनसे आपको ठंड भी लग सकती है सर्दियों के, मतलब सर्दियों के मौसम में भी नहीं, कहीं पर भी लग सकती है, और एसिडिटी से भी जो संबंधित आपको इश्यूज हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि गर्भावस्था में जनरली खास तौर पे एसिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हम पोषक तत्व ज्यादा ले रहे होते हैं। ये पाचक को ठीक रखते हैं और शरीर को ठंडक भी देते हैं
1: जी।
0: तो मोटे अनाज जैसे जवार, बाजरा, रागी और कोदो को जरूर खाना चाहिए। ये अनाज ताकत देते हैं और लंबे समय तक पेट भी भरा रखते हैं आपको बार बार। मैंने कहा बहुत खूबसूरत समय होता है गर्भावस्था का, आपको हर थोड़ी देर बाद भूख लगती है, और वो भूख भी ऐसी लगती है कि उस समय आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ अच्छा आपकी स्वाद अनुसार आपको चाहिए, तो आपका पेट भी भरा रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो मोटे अनाज है, ये आपके पेट को भी भरा रखेंगे, आपको एक भरपूर जो है एहसास भी देंगे। इन्हें पकाने से पहले, ये खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें पकाने से पहले 5 से 6 घंटा पहले भिगोकर रखना चाहिए, ताकि जल्दी पक जाए और पचने में आसान हो। और खासतौर पर मोटे अनाज हमें जो है वो दोपहर खाने के समय में हमको शामिल करने चाहिए, रात में इनको खाने से बचें, क्योंकि पाचन संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं उससे। और आपने देखा होगा हमारे घर में एक बहुत ही वो एक मैजिकल सी एक वस्तु होती है जिसको हम हींग कहते हैं। तो अगर हींग की एक चुटकी आप मोटे अनाज को उबालते हुए उसमें डाल देंगे, तो आपको जो है ये पचने में आसान होगा और गैस संबंधित समस्याएं नहीं होंगी।
1: बहुत खूबसूरत।
0: तो कुल मिलाकर रोज के खाने में कम से कम 5 अलग अलग तरह के खाद्य समूह जरूर शामिल करें, जो हम विविधता की हम जो बात कर रहे हैं, तो इससे माँ को पूरा पोषण मिलेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
1: चलिए टीकन भाभी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बातों का सिलसिला करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: थैंक यू। टीकन भाभी, बहुत सी महिलाएं नहीं जानती कि फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की गोलियां कब और कैसे लेनी चाहिए। अगर आप जरा समझाएं कि इनका सही तरीका क्या है, तो ये हमारे लिए, हमारी महिला श्रोताओं के लिए बहुत मुफीद रहेगा।
0: जब बात आती है दवाई लेने की, ये हमारी पोषक तत्वों से संबंधित दवाइयां हैं, ये दवाई नहीं है। अक्सर जो हमारी महिलाओं के दिमाग में ये बात रहती है कि उनको दवाई लेनी है, और मैंने कई जो है महिलाओं को देखा है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि हमारा गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में जो है बहुत तरह की प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, बदलाव हो रहे होते हैं, तो अक्सर आपका जो जी मिचलाने वाली जो समस्या है बहुत ज़्यादा रहती है। तो खास तौर पे जैसे ये आयरन की बात हम कर रहे थे, तो ये दवाई जो है मैंने बताया था आपको कि लेने से बहुत बचती हैं महिलाएं
1: जी।
0: क्यों? तो क्योंकि आप बात कर रहे हैं कितनी जरूरी है और कैसे लेनी चाहिए, तो पहले ये मैं बात बता दूं कि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब गर्भावस्था की शुरुआत होती है यानी पहले 3 महीने तक, तब रोजाना 1 फोलिक एसिड की गोली खाना बहुत जरूरी है। ये बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद करती है। और 4th महीने से लेकर डिलीवरी तक रोजाना 1 आयरन की गोली जरूर लेनी चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया।

0: है कि जिसको लेने से बचते हैं, लेकिन यही सबसे ज़रूरी भी है, जिसे हम आइफा कहते हैं। सो ये गोली खाने के बाद नींबू पानी या सादे पानी के साथ भी आप ले सकती हैं, ताकि शरीर में खून की कमी ना हो। और अगर किसी महिला को पहले से ही एनीमिया है तो उसे दिन में 2 बार आइफा की गोली लेनी चाहिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि इसको खाना खाने के बाद ही ले, खाना खाने के से पहले खाली पेट कभी भी आइफा की गोली नहीं लेनी चाहिए। तो साथ ही 4th महीने से कैल्शियम की भी 2 गोलियां रोज लेनी चाहिए, और एक सुबह और एक शाम को। लेकिन ध्यान रहे, आयरन और कैल्शियम की गोली एक साथ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो इनके बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। और आयरन की गोली दूध, चाय या कोल्ड ड्रिंक, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इनके साथ में हमें नहीं लेनी चाहिए, है ना। और इससे उसका फायदा मिलता भी नहीं है। तो एक और खास बात ये कि अक्सर डिलीवरी के बाद महिलाएं जो है अपनी ये पोषक वर्धक जो दवाइयां हैं, गोलियां हैं, लेना बंद कर देती हैं। उनको लगता है कि चलिए अब तो पोषक तत्वों की जरूरत नहीं है शरीर को। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखें कि अब भी आपको उतनी ही जरूरत है, कम से कम अगले 6 महीने तक। और ये दोनों गोलियां हमें अगले 6 महीने तक जारी रखनी है। सो क्योंकि तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रह पाएंगे।
1: टीकन भाभी, बातचीत के दौरान बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, और जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलता हूँ, डॉक्टर से बात करता हूँ, तो मेरे आसपास सर्कल में भी जब ऐसे लोग आते हैं जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं, जो कुछ वो जानना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं या समझना चाहती हैं, तो बेसिक जानकारी मैं डिलीवर कर पाता हूँ।
0: तो बहुत बहुत अच्छी बात है।
1: ये अलग हटकर बात थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं यहाँ शेयर कर दूँ।
0: लेकिन गगन जी, मैं जरूर यहाँ ये कहना चाहूंगी कि हम अक्सर गर्भावस्था की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए ये जानना जरूरी है, महिलाओं को ये जानकारी देनी जरूरी है, समझना जरूरी है। लेकिन उनके अलावा भी पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि पुरुष का जो साथ होता है आपके उस समय पर, जो आपके जीवन साथी का जो साथ होता है, परिवार के बाकी सदस्यों का जो साथ होता है, वो महिला के लिए मैं कहूंगी कि मानसिक तौर पर उसको एक शक्ति देता है, उसको एक इमोशनल सपोर्ट देता है। तो अगर वो भी बार बार उसको याद दिलाएंगे, दवाई लेना याद दिलाएंगे, उसके भोजन का ध्यान रखेंगे, उसके मन को खुश रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो दवाइयों से ज्यादा असर करता है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी बात को मैं आगे लेकर जाना चाहूंगा कि जब हमारे सामने 6 महीने का कोई छोटा सा बेबी सामने आता है, और अक्सर उसके आसपास छोटे छोटे बेबीज जब होते हैं वो कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की चर्चाओं का लाभ हमें मिलता है तो हम उन बच्चों को मना करते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए लाभकारी होता है, और 6 महीने के बाद बच्चा धीरे धीरे खाना शुरू करता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। टीकन भाभी, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों की जो गर्भवती महिलाओं की सेहत पर बड़ा असर डालती हैं, जैसे साफ सफाई, नींद, तनाव और खान पान की आदतें। आप जरा बताइए कि इन बातों का ध्यान कैसे रखा जाए।
0: गगन जी, ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारी बातें मेरे पास हैं, और ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि तनाव तो हमें एक ऐसी चीज है जिससे हमें हमेशा ही बचना चाहिए, लेकिन गर्भावस्था के दौरान तो आपको तनाव से कोसों दूर रहना है। तो और तनाव के अलावा सबसे पहले तो आप जो खाना बनाएंगे, जो खाना बनाने और खाने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है साफ सफाई के द्वारा। तो आप अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें, खाने से पहले भी धोएं और खाने के बाद भी जरूर धोएं। साफ बर्तन, ताजा खाना और साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वरना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर इन्फेक्शन को, संक्रमण को ज्यादा जो है वो जल्दी पकड़ता है, जल्दी कैच करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से आपको बचाए रखना है, जिसमें साफ सफाई का बहुत बहुत ज्यादा भूमिका है। गर्भवती महिला को रात में कम से कम 8 घंटे की नींद और दिन में भी थोड़ा सा आराम करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर को आराम देंगे और आपको जो है ताजगी देंगे, आपको जो रूटीन का, जो रोजाना का जो आप काम करते हैं उसकी थकान से आपको बचा के रखेंगे। उसका एक तरीका ये भी है कि आपको बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, आप बीच बीच में अपने शरीर की जो जो पोस्चर है आपके शरीर का वो आप बदलती रहें, कभी बैठ जाएं, कभी खड़ी हो जाएं, थोड़ी सी भी थकान लगे तो थोड़ी सी देर लेट कर भी काम के बीच में आराम कर लें। और चाय कॉफ़ी से आपको जो है वो काफ़ी दूरी रखनी है, आपको कम पीना है क्योंकि इनमें कैफीन होता है और वो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी कर देता है। और धूम्रपान तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका जो सीधा जो असर है वो आपके स्वास्थ्य पर और बच्चे के स्वास्थ्य पे दोनों पे जा रहा है
1: जी।
0: तो आपको उससे पूरी तरीके से बचना है। और क्योंकि तनाव की हमने बात की तो तनाव के साथ साथ हमें चिंता और गुस्से से दूर रहना है क्योंकि चिंता क्या करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देगी और गुस्सा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। तो इन दोनों से आपको दूरी बनानी है ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे रहे, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपके बच्चे की ग्रोथ पर भी बहुत ज्यादा असर डालता है। तो इसका आप ध्यान रखें। और जितना आपका मन शांत रहेगा, इस बात को खास तौर पे आप ध्यान रखिए कि जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप खुशनुमा वातावरण में रहेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे अपने अंदर, उतना ही गर्भ में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आपके मूड का, आपके मन का सीधा जो असर है वो बच्चे के भी मन पे जा रहा है। और साथ ही एक जरूरी बात का हमेशा ध्यान रखें कि आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करें, इससे बच्चे का मानसिक विकास सही तरीके से होता है।
1: बहुत खूबसूरत बातें आप टीकन भाभी बड़े अनुभव के साथ आप साझा कर पा रही हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सच बात तो है कि जिस घर आंगन में किलकारी गूंजती है तो निश्चित तौर पर सबको खुशियां अपार मिलती हैं। उन खुशियों को आप अनुभव करिए। और जब आपके घर में कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है यानी कि गर्भवती महिला है, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सेहत का ख्याल रखें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और बात मैं आपके सामने ये लेकर आ रहा हूँ कि बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि बस खाना पाना, अरे माफ कीजिएगा, खाना पीना ठीक हो जाए तो सब सही रहेगा, लेकिन शरीर की देखभाल और कुछ जरूरी दवाइयों का सही समय पर लेना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा गगन जी आपने कि गर्भावस्था में सिर्फ पोषण ही नहीं, हमारी बल्कि रोजमर्रा की जो आदतें हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आप जैसे कि आप हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें, यानी अपने शरीर को जो है वो बिल्कुल ज्यादा आराम परस ना बनाएं, क्योंकि शरीर जितना चलता रहेगा, जितना व्यायाम करेगा या काम करेगा, उतना ही आपके जो अंग है वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और आपका जो कि मानसिक तनाव हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया उससे भी आप बचेंगे। और छोटा छोटा व्यायाम जैसे कि टहलना या हल्की सी स्ट्रेचिंग करना ही जो है आपको काफ़ी राहत देगा, इससे शरीर भी चुस्त रहता है और डिलीवरी भी काफ़ी आसानी से होती है। लेकिन भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं क्योंकि इससे कमर और पेट पर जोर पड़ता है। और खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे आपको एसिडिटी से भी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में एक एल्बेंडाजोल की गोली जरूर लेनी चाहिए, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की निगरानी में ही लें। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है वैसे वैसे मानसिक और शारीरिक तैयारी ज़रूरी हो जाती है। और एक और बात का ज़रूर ध्यान रखिए गगन जी, क्योंकि ये मैं आपको एक पर्सनल अनुभव से भी, अपने खुद के अनुभव से भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि गर्भावस्था के दौरान हमारे आसपास बहुत सारे डॉक्टर होते हैं।
1: ये सही कह रहे हैं।
0: परिवार का हर सदस्य डॉक्टर होता है, खासतौर पर जो परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं क्योंकि वो भी इस समय से गुजर चुकी हैं, तो वो आपको छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत सलाह दी जाती है। तो आप सुने सबकी लेकिन करें अपने मन की, और खास तौर पर आपके मन से ज्यादा इस समय पे डॉक्टर के मन की आप जरूर करें। आपको जिसकी बात माननी है वो डॉक्टर हैं, आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आपको लगता है कि कोई असामान्य आपके साथ में कोई स्थिति है, तो आप डॉक्टर से बात करके और दवाई लें। घर वालों से लेकिन वैसे बात जरूर करें, इससे आपके मन को खुशी मिलेगी। जरूरी सामान हमेशा डिलीवरी के लिए अपने पास तैयार रखें, क्योंकि खास तौर पे नौवें महीने की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय वो सामान तैयार रखें क्योंकि आपको कभी भी अस्पताल जाने की जरूरत हो सकती है, तो उसकी आप योजना बना लें। और अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पे हमेशा अपने बच्चे को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए इस दुनिया में उसका हमेशा तैयार रहें।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में टीकन भाभी ने अपने मन की बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दी। दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि जिस घर में किलकारी नहीं गूंजती, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दुआओं प्रार्थनाओं का दौर चल रहा होता है, तो क्यों ना हम उस आने वाले मेहमान का वेलकम करें जिस तरीके से डिटेल में टीकन भाभी ने आपको बताया, और जो अनुभवी लोग हैं उनको भी आप सुनिए समझिए, लेकिन जो अंडरलाइन है डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा करेगा। तो श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई यही समाप्त होता है। हमने जाना है गर्भावस्था के दौरान सही खानपान, साफ सफाई, आराम और जरूरी दवाइयां माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है,
0: और इन सब के साथ में बहुत जरूरी है मानसिक शांति और खुशी।
1: क्या बात है, इसके लिए जरूरी है कि आप गगन को सुनते रहें, टीकन भाभी को सुनते रहें और सुनो शारदा 90.8 एफएम को सुनते रहें। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि अब आप मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे माँ और बच्चे की सेहत से जुड़ी और भी जरूरी बातों पर। तब तक स्वस्थ रहिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम और आप टीकन भाभी शपथ ले ले
0: जी बिल्कुल,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
3: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
4: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
3: क्या है राज?
4: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहे।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आरजे शशि कपूर। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्ना मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी। वे हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए, साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं टीकन भाभी। तो सबसे पहले स्वागत है टीकन भाभी आपका हमारे स्टूडियो में और साथ ही साथ हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, घुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है, कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। भाभी, असल में सही क्या है?
1: सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने अहम मुद्दे पर मेरे से बात की। हम लोग पहले भी बहुत सारे जरूरी मुद्दों पर बात कर चुके हैं, लेकिन माँ और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। सच तो यह है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, यही बच्चे की पहली दवा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और शरीर मजबूत होता है। अभी हमारे गांव की गीता ने कुछ महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया था। घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि इसे शहद चटा दो, घुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब की सलाह मानी। उसने तुरंत बच्चे को अपना गाढ़ा दूध पिलाया। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना उसे बार बार सर्दी जुखाम होता है, ना ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए कि ना शहद, ना घुट्टी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी। बच्चे की असली ताकत तो उसके माँ के दूध में ही छिपी है, यानी माँ का पहला गाढ़ा दूध। आज हम अपने स्टूडियो में नवजात शिशु और माँ के सेहत पर बात करने के लिए अपने श्रोताओं से जुड़े हैं।
0: बिल्कुल भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग जाता है। उस वक्त नवजात को डिब्बा बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है?
1: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं तो उस दौरान माँ के साथ आए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान कराए। शिशु को ना तो डिब्बा बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित दूध उसकी माँ का ही होता है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, बच्चे को कभी भी बोतल का दूध ना दें। बोतल से संक्रमण फैलने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, जिससे बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझे?
0: लेकिन भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के एक घंटे के अंदर दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है?
1: आपने तो एक बहुत जरूरी प्रश्न किया है। देखिए, बच्चे को जन्म के एक घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहला, बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिलता है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। इससे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ताकत होती है वो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा यह है कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इससे बच्चा आराम और सुरक्षा महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका एक फायदा होता है, प्रसव के बाद उसका रक्त श्राप कम हो जाता है और सेहत जल्दी संभलती है। साथ ही शोध से ये भी साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुल मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
0: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
1: डॉक्टर सही कहते हैं, माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसमें वो सब कुछ है जिसकी नवजात को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे के शरीर को बढ़ने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म करने के लिए फैट है, ताकत के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स हैं। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए खाना और दवा दोनों है।
0: भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
1: हाँ, मैं अपने श्रोताओं को इस जरूरी जानकारी से अवगत कराना चाहूँगी। बच्चा जब भी चाहे, चाहे दिन हो या रात हो, माँ को उसे बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा कर बता देता है कि उसे भूख लगी है। ऐसे समय पर दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चे का वजन कम है, यानी 2.5 किलो से कम का है, तो उसे और ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं ले पा रहा तो माँ अपना दूध निकालकर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह जाएगा, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई भाभी, लेकिन कैसे समझें कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है।
1: देखिए, पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझो उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खिल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा, तो ये भी एक अच्छी निशानी है। और सबसे पक्की बात तो यह है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है।
0: भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकालकर बच्चे को पिलाना पड़ता है। लेकिन ये काम कैसे किया जाए, कई माँ इसे लेकर बहुत घबराती हैं।
1: देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि बच्चा माँ के स्तन से नहीं लगता है। ऐसे में माँ दूध को किसी बर्तन में निकालकर फिर उस दूध को बच्चे को कप या छोटे चम्मच से पिलाना चाहिए। और अगर तुरंत नहीं पिला रहे हैं तो दूध को ढक कर रख दें। ये करीब 6 घंटे तक सुरक्षित रहता है।
0: भाभी, कई बार नई माएं सोचती हैं कि शिशु को गोद में कैसे पकड़ें और किस तरह दूध पिलाएं, सही तरीका क्या होना चाहिए।
1: हाँ, ये समस्या माँ के सामने आती है, लेकिन इसका क्या सही तरीका है मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरीके से दूध पी रहा हो तो गटकने की हल्की सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो तभी स्तनपान सही तरीके से हो पाता है।
0: भाभी, कई बार मैंने सुना है कि नई माँ को दूध पिलाते समय स्तन में सूजन, दर्द या सख्ती जैसी परेशानियाँ हो सकती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरीके की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन को धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से सेकने से भी आराम हो जाता है।
0: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म सेक काम करता है। लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए।
1: इसके लिए तो माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए और शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। और अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा दूध पहले निकाल लें। इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पाएगा।
0: दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है।
1: हाँ, क्यों नहीं, माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सुकड़ने लगता है। इससे फ्लोसेंटा भी जल्दी बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाएं और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता जरूरी है।
0: अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
1: हाँ, अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हर दिन कम से कम 5 तरीके की चीजें जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जी, दूध, दही, फल और अनाज। तभी माँ और बच्चे दोनों की तंदुरुस्ती बनी रहेगी।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की बातों से साफ है कि माँ का दूध न सिर्फ बच्चों के लिए अमृत है, बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेरों फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर और भी अहम बातें करेंगे। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: सेहत सही तो लाभ कई।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाए। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। जी हाँ किसान मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको खेती किसानी की नई नई जानकारी पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं, ताकि आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सके। और किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खी पालन योजना की। किसान मित्रों, आपकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं और इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही मधुमक्खी पालन स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। यदि बात की जाए कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए और कितना खर्चा इसमें आएगा शुरुआती दौर में, तो आपको बता दें कि यदि आप शुरू में 10 पेटी के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके मधुमक्खी पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना मधुमक्खी पालन योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं केशव कुमार और ज्योति। किस्सा रहेगा रामायण का।

किसान मित्रों, अभी आप केशव कुमार और ज्योति से ये रागनी सुन रहे थे, किस्सा था रामायण का। किसान मित्रों, आज के समय में फसल की बेहतर पैदावार पाने के लिए कृषि यंत्रों और मशीनों का जमकर उपयोग हो रहा है। अब तो खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक का काम कृषि यंत्रों से ही किया जा रहा है। रोटावेटर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, रोटो सीड ड्रिल, स्ट्रा रीपर, निराई गुड़ाई के स्वचालित यंत्र, लेजर लैंड लेवलर, स्वचालित और ट्रैक्टर चलित छिड़काव का यंत्र किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कृषि यंत्र और मशीनें कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि यंत्र और मशीनों के उपयोग से कम समय में कम श्रम के साथ और कम लागत से अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा बीज, उर्वरक, पानी और कृषि रक्षा दवाओं का उपयोग भी इन्हीं कृषि यंत्रों और मशीनों की मदद से किया जाता है। कृषि यंत्रों का प्रयोग समय पर कृषि कार्य संपन्न करने

0: रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इन पर तेल और ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। कृषि यंत्रों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार ही प्रयोग करें और विशेष कार्यों के लिए विशेष यंत्र का ही प्रयोग करें ताकि कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से उनके सभी पुर्जों की जांच कर लें। यंत्रों के उपयोगकर्ता को यंत्र चलाने का अच्छी तरह से ज्ञान और उसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अन्य सुरक्षात्मक साधनों का जैसे पानी और रेत को कार्य करते समय पास रखें। कृषि यंत्रों और मशीनों का प्रयोग करते समय केवल कुशल श्रमिकों को ही सहायक के रूप में काम पर रखें। विशेष तौर पर महिला श्रमिकों को कार्य शुरू करने से पहले ठीक प्रकार समझा दें कि किस प्रकार कार्य करना है। कार्य करने के दौरान कोई रुकावट आ जाए तो कुशल मिस्त्री की ही सहायता लें और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को कृषि यंत्र और मशीनों के पास ना आने दें। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई कृषि यंत्रों का रखरखाव और उनका उपयोग करें। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कृषि यंत्रों के रखरखाव और उनके उपयोग की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और किस्सा रहेगा लव कुश का।
1: और हम दर

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये रागनी, किस्सा था लव कुश का। किसान मित्रों, भारत सरकार द्वारा आपकी आय को बढ़ाने और आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसान भाइयों के समक्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं लॉन्च की जाती हैं और इन योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि फसलों का चौमुखी विकास करना है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझान बागवानी के क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रहा है और सबसे खास बात यह है कि वर्तमान समय में देश के हमारे बहुत से किसान भाई बागवानी से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने और हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया है। किसान मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को उच्च दामों वाली सब्जियों, फल और फूलों, साथ ही मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए बहुत सारी भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी फसलों की सहायता से छोटे और हमारे सीमांत किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है, ताकि हमारे किसान भाई पारंपरिक खेती की अपेक्षा आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित हो सके। इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई, नेट हाउस, भंडारण और तारबंदी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर। किस्सा रहेगा महाभारत का।

ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
5: 90.8 एफएम। नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
6: काकी आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
5: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
6: हाँ अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
5: दुल्हन सुंदर ही नहीं समझदार भी है।
7: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो, और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं, और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें, और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए, और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

बेटी वाले को बहका दिया कि अच्छी दावत करनी चाहिए शादी में। तो दोस्तों शादी में जो दावत हुई उसमें खूब जोर लगा दिया बेटी वाले ने। मेहरबानों

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं। तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो

0: पोजीशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
1: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
2: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: आज जहां नजर घुमाओ वहीं मन चले दिख जाएंगे। घर से लेकर कॉलेज और ऑफिस तक, ऐसे में माँ बाप के द्वारा बढ़ती सख्ती लड़कियों के दिल में और डर डाल देती है। ऐसे वो आगे नहीं बढ़ पाती, मनचले बहके कदमों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में हमें बचकर रहना होगा, हमारी एक लापरवाही हमें मुश्किल में डाल सकती है। खासकर किशोरी उम्र में अगर देखा जाए तो ये उम्र नई चीजों को समझने और सीखने की होती है, पर हम ये नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं कि इस उम्र में ही कदम सबसे ज्यादा बहकते हैं। और जब बात इंटरनेट की आती है तो लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे में जो अच्छा लगता है वही सही लगता है। कई बार लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। चैटिंग ऐप्स से लेकर डेटिंग ऐप्स तक मनचले अपनी नज़र रखे रहते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि इंटरनेट विकास के उपयोग के लिए है, ना कि जाल बिछाने के लिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल इंडिया अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, क्योंकि देश में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में भारी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया है कि 2019 में साइबर अपराधों में 4,45,046 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में ये 28,02,048 था। ये सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेट का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। और किशोर उम्र में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया होता है। इंटरनेट में ऐसे नए अनजान लोगों को दोस्त बनाना, उनसे अपनी पर्सनल डिटेल साझा करना, ऐसी नादानियां होना आम बात है। हर जगह सोशल मीडिया में अपनी अपडेट्स डालना, इन्हीं सब चीज़ों की तलाश होती है मनचलों को। इसीलिए हमें बच्चों को इंटरनेट के दोनों पहलू समझाना चाहिए। अगर हम अपनी नज़र घुमाएं तो हमारे आसपास ही ऐसे मनचले दिख जाएंगे जो सिर्फ अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे में किशोरों को हर अच्छी लगने वाली चीज़ सही लगती है, तो उन्हें हर चीज़ के दोनों पहलू समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ भी करने से कम सोचेंगे। उनको समझना बेशक आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उनको कम से कम पता होगा कि वो किस राह में चल रहे हैं। कई बार उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। रिश्तेदारों ने छेड़खानी की या प्यार था उनका, किससे ये बात साझा करें। वैसे तो माँ बाप को ऐसी समझ बनानी चाहिए अपने और अपने बच्चों के बीच कि बच्चे उनको अपना दोस्त मान लें। कुछ भी सलाह या मन की बात करनी हो तो उनसे ही वो सबसे पहले करें। भारत में 86% यौन उत्पीड़न परिवार के सदस्यों जैसे भाई और चाचा, साथ ही पड़ोसी, नियोक्ता, सहकार्यकर्ता और दोस्तों द्वारा किया जाता है। 14,102 यानी 38% बलात्कार पीड़ितों की उम्र 18 वर्ष से कम थी। ऐसे में आपका अपने बच्चों के साथ कैसी समझ होनी चाहिए, आइए इस कविता द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
4: यूं
3: कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, क्योंकि हम नहीं अनजान हैं। पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे पीछे खड़े हैं हम। बता दे जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे हमदर्द हैं हम। डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं, डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं। समझने वाला ये वक्त है आया, मुझे तू अपना दोस्त बना ले मेरे बच्चे। देख तेरे लिए मैं फ्रेंडशिप बैंड भी लाया। इस कविता के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक माता पिता को किस प्रकार से अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि वो बच्चे अपने माता पिता से हर एक बात साझा करें। अब चलिए सुनते हैं कुछ बहके कदमों की कहानियाँ। निखिल जो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, चलिए उनकी जिंदगी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। जो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, चलिए उनकी जिंदगी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं।
4: अरे यार राज, सड़क पर आज कोई फूल झड़े नजर नहीं आ रही।
3: हाँ यार निखिल, आज तो कोई दिख ही नहीं रहा।
4: यार एक बात बता, क्यों ना हम ऐसे कर लेते हैं कि सड़क के लेफ्ट में जो लड़की जाएगी वो मेरी और राइट में जो जाएगी वो तेरी।
3: चल ठीक है, पर अगर कोई लड़की गुस्सा करेगी तो?
4: अरे यार ये लड़कियाँ हमारे लिए है ना, और हमारी नहीं होंगी तो किसकी होंगी।
3: चल ठीक है, बस इतना हंसने की कोशिश मत कर। इतना बता दे लड़कियाँ कहाँ दिख रही हैं यार।
4: देख देख देख देख देख, आई तो सही।
3: अरे हाँ वो रही।
4: अरे अंधे, अरे देख तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट वाली रोड में नहीं राइट वाली में।
3: यार निखिल देख, उसे तू कुछ मत कहियो।
4: क्यों?
3: क्योंकि वो मेरी बहन है यार।
4: यार राज देख, डील तो पहले ही तय हो गई है। तूने ये कहा था कि जो राइट साइड से लड़की आएगी वो मेरी होगी।
3: पर यार निखिल वो मेरी बहन है।
4: देख मुझे कुछ नहीं पता, तूने तो पहले ही शर्त लगाया था, और अगर तेरी बहन की जगह मेरी बहन होती तो मैं खुशी खुशी हाँ कर देता।
3: हाँ ठीक है ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। आगे क्या हुआ इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन क्या इससे भी बड़े मनचले हो सकते हैं? चलिए आइए इस दूसरी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं।
5: अरे भाई अमित, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है यार?
3: और नहीं तो क्या करूं यार, उस सोनिया ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए ठुकराया ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मना भी कर दिया यार।
5: अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि तुझे मना कर दे?
3: और नहीं तो क्या, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा यार, सबके सामने बीच सड़क पर।
5: क्या? और तू अभी तक हाथ पर हाथ रखे बैठा है अपनी इंसल्ट करवा के?
3: मैं तेरी जगह होता तो अभी तक उसे सबक सिखा चुका होता। यार मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे किस तरह से करूं और क्या करूं ऐसा कि जिंदगी भर याद रखे।
6: मनचले किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर बार अनजान ही हो, कई बार रिश्तेदार और टीचर्स भी हो सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ किशोरी उम्र के ही मनचले होते हैं, कई बार देखा गया है बड़े बूढ़े भी ऐसी तुच्छ हरकतें करते पाए गए हैं। ऐसे में परवरिश का एक बड़ा रोल है। समाज में पल रहे पनप रहे इस सोच को खत्म करने के लिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर।
7: नमस्कार, मैं हूँ साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। और आपने दो ऐसे नाटक सुना जो ऑडियो नाटक था, जिसमें आपने खास तौर से मनचलों की बातें सुनी और किस प्रकार से वो लड़कियों को टारगेट करते हैं, किस प्रकार से वो लड़कियों के लिए अपने प्लान बनाते हैं और फिर उनको उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे साथ अक्सर देखने को मिल जाती है, हमारे आस पास में, पड़ोस में, मोहल्ले में। और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के समय में महिला के साथ लूट, छीना छपटी, छेड़छाड़, अपहरण, रेप आदि घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। महिलाएं सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, महिला हो या हाउसवाइफ हो, हर जगह उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा बना ही रहता है। इसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, और मार्केट में या ट्रेन में या ऑटो में या लिफ्ट में, गली मोहल्ले में मनचले या बदमाश लड़के को का जो छेड़छाड़ करना है वो जारी है। उन पर अश्लील कमेंट करना, अश्लील इशारे करना आदि रोजाना की लगभग आम बात सी हो गई है। बहुत सी लड़कियां
3: रोज़ रोज़ इन बदतमीजियों से तंग आकर या तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं या फिर डर कर कुछ कह नहीं पाती हैं, जिससे ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ता है, हौसला बुलंद होता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो

0: में फोन के माध्यम से अंजना जी हैं, जो कि रूम टू रीड की प्रोग्राम एसोसिएट है। मैम बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: हम आपको बता दें कि आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप सड़क पर हो, रास्ते पर हो, पैदल चल रही हो, तो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, हेडफोन इस्तेमाल करते समय किस प्रकार से समझदारी बरतें, आने जाने वाले रास्ते का चुनाव किस प्रकार से करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में किसी अजनबी के साथ अकेली हो तो क्या करें, और जब आप अकेले या रात में टैक्सी या ऑटो का सफर कर रहे हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा करे तो क्या करें। तो इसका क्या इलाज है समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं खोट है।
1: ये बहुत एक देखिए बहुत सामान्य सी बातें कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मन चले तो लोग अगर आप किसी से भी बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे सोच के स्तर पर। तो हम क्या कह रहे, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। तो परिवार में देखें, घर में देखें, तो वो जो आप लड़कियों को तंग करते हैं उनको आपके पुरुषत्व से जोड़ा गया। अरे लड़के तो ऐसे ही होता है। अगर किसी लड़की को छेड़ दिया और लड़की ने को अगर उसने परेशान कर दिया तो उसकी कॉलर दूसरे लड़कों के बीच में भी खड़ी हो जाती है। तो एक तो इसका जो है हम कैसे इसका स्पेसिंग हो जाता है मन चले शब्द का, जो जितना एक कहना चाहिए ग्रीवियस या फिर जिस तरीके से इसका प्रभाव है हम उस तरीके से इसको देखते नहीं है। तो हम सामाजिक तौर पे मान के चलते हैं कि लड़के तो मनचले होते ही हैं और इसको हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम लड़की हो तो तुम्हें ही सब कुछ की जिम्मेदारी तुम पे है। तो अगर तुम्हें लड़का छेड़ रहा है तो तुम्हें ही कोई कमी होगी। लड़का अगर तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर वो कुछ भी बोले जा रहा है, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों नहीं हो, तो गलती लड़के की होगी। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि इस चीज को समझने के लिए मतलब हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इस शब्द को इतने हल्के से ना लें। अगर आपका लड़का है तो उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कि कितनी बार क्या होता है ना कि वो लड़के भी अनजाने में करते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता होता है कि इसका प्रभाव जिसको आप छेड़ रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है
0: जी।
1: और आप उसको अपने जो क्षणिक खुशी होती है या पुरुषत्व होता है उससे जोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम इस परिस्थिति में कि लड़के ही लड़की को छेड़ते हैं, या लड़कियां भी कभी कभी ऐसा आता है कि जगह होती है जहां पे लड़कियों का वर्चस्व होता है, तो देखा गया कभी कभी ऐसे होते हैं कि लड़कियों ने छेड़ दिया, विच इज वेरी रेयर बट लोग बोलते हैं। तो हमें इस कल्चर को समझना चाहिए और इस पे उनका सेंसिटाइज करना चाहिए।
0: बिल्कुल आपने कहा ना, आपने बिल्कुल ये कहा कि जो हमारे अंदर ये मेंटेलिटी हमारे समाज की बन गई है कि अक्सर लड़की ही गलत होती है और लड़की को सबमिसिव होना चाहिए।
1: तो तुम ऐसे नहीं बैठो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, तुमने दुपट्टा नहीं ओढ़ा इसलिए लड़के छेड़ रहे हैं।
0: हाँ, तुम्हारे कपड़े छोटे थे इसलिए छेड़ रहे
1: हैं। तुम जींस पहनोगे तो होगा ही यही तुम्हारे साथ। तो खास करके ये जो एडोलेसेंट एज है किशोरावस्था में इस तरह की पाबंदियां जो है वो लड़कियों पे बढ़ती जा रही है, और इसी तरीके का फ्रीडम जो है लड़कियों को मिलता चला जाता है। रूम टू रीड अगर मैं संस्था की बात करूं तो हम लोग लाइफ स्किल पे काम करते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ स्किल कितना महत्वपूर्ण है एक एडोलेसेंट उम्र के लड़के और लड़कियों को समझने की, कि आपको उस चीज के लिए आपको जागरूक करता है, आपको सेंसिटाइज करता है, और आपको ये देखने का मौका देता है कि आपकी हरकत दूसरी जो आपका काउंटर पार्ट है जिसको आपने छेड़ा उनके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, उनको सामाजिक पाबंदी किस तरीके से लगाई गई, और परिवार के अंदर में भी किस तरीके से रोक टोक शुरू हो गई। ये तो एक है। दूसरी तरफ देखिए जो मनचला लड़का है उसको देखिए, उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है। आप छेड़ने लगे, आप उस छेड़ने के विशेष साइकिल में जा रहे हैं, तो आपका सेंसिटाइजेशन लो हो रहा है। तो आपके सामने वाला जिसको आप छेड़ रहे हैं या जो दुखी हो रहा है उससे आपको क्या हो रहा है, प्लेजर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव प्लेजर लेने लग गए, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी लगना चाहिए वो आप डाइवर्ट हो गया और डिस्ट्रक्टिव माहौल में चला गया, एनर्जी की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं उस उम्र में अगर आपका पढ़ाई, आपकी अलग जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो पीछे रह जा रही है, और आप इस तरह की हरकतों में बढ़ते चले जा रहे हैं जिस वक्त में माता पिता बिल्कुल एहसास तक नहीं करते हैं।
0: सही
1: और
0: है।
1: जब उनको पता चलता है तो पता चलता है कि लड़का जो है या लड़की जो है वो तो जितनी वो सोचती थी समस्या उसे कहीं ज्यादा हो गई है। जितनी नहीं होनी चाहिए थी,

0: पेरेंट्स हैं उनको बदलनी होगी और अपने बेटों को सीख देनी होगी। अब हम ये बात करेंगे कि अगर इस तरह से हो जाए, क्योंकि अभी तो हमारा समाज इतना डेवलप नहीं है, तो लड़कियां किस प्रकार से अपना प्रिकॉशन ले सकती हैं जब आप सड़क पे चलें, रास्ते में चलें, पैदल चल रही हो तो क्या करें?
1: जी पहले तो जब वहां पे आते हैं ना, तो सबसे पहले एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत होगी, लड़की अगर रास्ते में आप चल रही हैं और आपका कोई पीछा कर रहा है, तो इसमें एक बात जो हमें, मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि इसमें दो तरीके की परिस्थिति होती है। पहले तो जो आपको छेड़ रहा है या रास्ते में आपके पीछे जा रहा है, तो आप पहले उसको श्योर हो जाइए कि सही में जो बंदा है वो छेड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, लड़की थोड़ा घबरा जाती है, एक्सपोजर का अभाव है, या वो एक घर में डांट पड़ेगी लड़का तुमको छेड़ता है, तो अगर नहीं भी छेड़ता है वो जस्ट इमेजिन करती है, क्योंकि इसमें ना मीडिया का भी बड़ा रोल है। आप फिल्मों में देखें, सीरियल में देखें, तो छेड़ने वाले लड़के का ना एक अलग टाइप दिखा दिया जाता है
0: जी।
1: तो अब अगर उस तरीके के लड़के या उस ड्रेसअप में लड़के आपको रोड पे दिखते हैं, तो आप तुरंत सोचते हैं ये लड़का चेंगड़ा टाइप का होगा, मनचला है और ये छेड़ देगा मुझे, तो घबराहट में भी आप गलतियां कर जाती।
0: Exactly. तो सबसे सही बात है। हाँ।
1: तो सबसे जरूरी है इस जगह पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। आप रोड पे चल रही हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो जहाँ जा रही हैं, जिस कपड़े में हैं, जिस तरीके से चल रही हैं, वो आपका निर्णय है और आप इसलिए उस पर कपड़े में हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कम नहीं आके कि शायद मैंने जींस पहन लिया है, छोटा टॉप पहन लिया है, क्रॉप टॉप है, तो शायद मुझे लड़का इसलिए छेड़ रहा है, और घर जाऊंगी तो मम्मी भी डांटेगी, तो घर से भी छुपा के मैंने पहना है, और ये तो आपका निर्णय है, आपने जो पहना है वो, या आप जिस जगह पे चल के जा रही हैं वो उस जगह के लिए आप खुद निर्णय लें कि वो जगह सही है, आप जो कर रही है वो सही है और आप उस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ये एक बात है। दूसरी बात है आप ऑब्जर्व करें थोड़े देर, मान लीजिए आप चल रही हैं और आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है, तो थोड़ा सा तेजी से चलने लगी, क्या वो बंदा भी तेजी से चलने लगा, रास्ते मुड़ जाइए, लेफ्ट हो जाइए अगर आप फ्रंट जा रही हैं, और अगर कोई बिजी वाला जगह, भीड़ भाड़ वाला जगह लेफ्ट में है या राइट में है, तो आप उधर मुड़ जाइए, और देखिए वो सामने वाला बंदा भी जा रहा है, अगर वो सही में आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आपके ऊपर कोई कमेंट पास कर रहा है, तो सबसे पहले यू स्टॉप, आप वहां पे रुकिए, क्योंकि आप भीड़ वाले जगह पे पहुंच गई हैं। अगर शांत जगह में है उस जगह पे जाने की कोशिश करिए जहाँ भीड़ भाड़ है,
0: जहाँ पे लोगों का चहल पहल है,
1: लोगों का चहल पहल है, किसी दुकान पे रुक जाइए, जैसे ग्रोसरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, उस जगह पे सबसे पहले आप वहां पे भी कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पीछे आ रहा है, तो आपको वो सपोर्ट मिल जा सकता है, ट्रस्ट हो सकता है। कोई महिलाएं अगर मिल जा रही हैं, अगर आप पुरुष के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो किसी फीमेल का भी आप सपोर्ट ले सकती हैं, किसी, तो ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं होता है, तो सबसे पहले तो उस जगह पे जाइए। दूसरी बात है कि अगर वो सही में आप पे कमेंट पास कर रहा है या आपका पीछा कर, तो कॉन्फिडेंटली उसको फेस कीजिए।
0: Exactly.
1: और जहाँ, हाँ, आप वहां पे कहिए कि आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं वो गलत है, और उसको आप फेस कीजिए। वो चीज है, आप जितना भागेंगी, आप जितना छुपेंगी, आप जितना डरेंगी, तो आपको उतना ज्यादा तंग किया जाएगा और वो आपके पीछे उतना दौड़ेगा।
0: मुझे तो लगता है कि हेडफोन का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के उस वक्त करना चाहिए चलते समय। तो अभी तो हमने ये बात कर लिया कि आप सड़क या रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या करें, हेडफोन का इस्तेमाल करें, किस तरह से करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम लिफ्ट में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से समझदारी बरतनी है।
1: तो पहले तो पीछे वाले सिस्टम से ही आते हैं जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वहां पे आ गए कि पब्लिक प्लेस में आ गए, वहां से आप हेडफोन का अगर इस्तेमाल करें तो क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल इग्नोरेंट हो रहे हैं, आपको दुनिया का कोई एहसास नहीं, अपना मोबाइल में लगे हुए दोस्तों से बात करते हुए चले जा रहे हैं, तो आपके आसपास का आपको अवेयरनेस नहीं है, तो बेहोशी जो है वो आपकी समस्या का कारण बन सकता है। सेम वो हेडफोन अगर आप लिफ्ट में इस्तेमाल कर रही हैं, आप कहीं भी कर रही हैं, तो आप सबसे पहले अवेयर हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, पर पब्लिक पे जब आप चल रही हैं या बाहर हैं, तो कोशिश करें कि हम इम्पोर्टेंट कॉल को ही लें और हम इसका इस्तेमाल नहीं करें। उसका सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता कि कोई आपको छेड़ रहा है, आप लिफ्ट में अकेली हैं तो आपको आपको दिखेगा नहीं कि कोई आपको गलत नजर से देगा, और आप अपनी दुनिया में व्यस्त है तो आपको नहीं, जब तक पता चलता है आपके लिए लेट हो जाता है, या बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो एक तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप लिफ्ट में हैं तो आपके लिफ्ट में मिरर होता है, तो आप 360 डिग्री जो है आप देख सकती हैं कि कौन है जो मेरे तरफ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझे ही देख

0: लिफ्ट में अलार्म बटन होता है तो आप उसको प्रेस कर सकती हैं, और आप ताकि जो गार्ड रूम होगा, कंट्रोल रूम होगा, वहां लोगों को पता चल जाएगा क्या परेशानी। तीसरी बात है, जिस फ्लोर पे आप हैं तो अमूमन 10 सेकंड लगता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, अगर हाइट सर्टेन हाइट होता है तो एक मिनट का मामला है, आप इमीडिएट जो अपकमिंग फ्लोर है उस पे उतर जाइए, वहां से उतर करके आप स्टेयर से नीचे की तरफ आइए जो गार्ड रूम का जगह है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जाएंगे हो सकता है वही आइसोलेटेड इन्वायरमेंट हो, तो वहां पे आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए, और उस जगह पे पब्लिक प्लेस में आकर के मतलब वहां पे अपनी चुप्पी को तोड़िए और वहां पे बोलिए कि आपको मदद की जरूरत है, हेल्प। ये जो होता है ना, स्टॉप रन एंड हेल्प,
1: यस,
0: हाँ, ये आपको करना चाहिए, एंड दैट इज विथ योर कॉन्फिडेंस। अगेन मैं कहती हूँ कि हमें स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, और उसको हम समझते हुए आप अपने एक्शन को लें, घबराए नहीं, बिल्कुल
1: सही बात है। और जब हम अगर ऑटो में सवारी कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं तो, या टैक्सी हो तो उस वक्त किस तरह से प्रिकॉशन लेना है?
0: जी बिल्कुल, ऑटो हो या टैक्सी हो, ये कि अमूमन प्रैक्टिस रखना चाहिए कि कितने नंबर का ऑटो से आप ट्रैवल कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है ना, जब हमारे साथ कोई समस्या होती है, कोई हमें छेड़ देता है, और तब अगर हम पुलिस स्टेशन में या 100 नंबर पे कॉल करके या हेल्पलाइन पे हम कॉल करते हैं तो हमसे यही पूछा जाता है कि ऑटो का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है। ड्राइवर के पास ना एक नंबर होता है, उनका नाम के साथ नेम प्लेट होता है, तो आप हमेशा इस चीज को ले, या टैक्सी में भी जाए, कहीं भी जा रहे हैं तो टैक्सी का नंबर, ड्राइवर का नाम और उनके आईडी कार्ड को जरूर देखिए।
1: अच्छा, अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कह रही थी आप।
0: हाँ, ताकि आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्लूनेस नहीं है। आप अगर ट्रेवल करिए, आप अपना फोन नंबर या लोकेशन किसी और से भी शेयर कर लें, फ्रेंड से।
1: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये तो है ही। अब हम बात ये कर रहे थे कि जैसे सुरक्षा की चीजें अपने पास रखने की हो, या फिर पार्टी के दौरान सतर्क रहने की चीज हो, या होटल में किस प्रकार से चुनाव करें, कहीं जैसे बस से जा रहे हैं, दूर का रास्ता है और बस खराब हो गई, बीच में होटल लेना है, तो किस प्रकार से हम उसका चुनाव करें, इन चीजों का कैसे ध्यान रखें हम, या पार्टी के दौरान सतर्क रहने वाली बात हो।
0: बिल्कुल, एक तो देखिए सेफ्टी किट होता है, तो आप अपना सेल्फ सेफ्टी किट जरूर अपने साथ रखें। बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है हमेशा निगेटिव है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी निगेटिव सर्कमस्टांसेस अगर हमारे लाइफ में आती है तो।
1: yeah.
0: तो बहुत सिंपल सी चीज है, चाबी का की होता है ना, किसी चीज की चाबी है वो आपके पास होनी चाहिए, अगर उस तरीके है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि चिली स्प्रे होता है, उस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके छोटी छोटी सेफ्टी की होती है, जैसे पेन है, पॉइंटेड है, पेंसिल है, जो आपके पर्स में होता है, होना चाहिए, तो आप उसका इस्तेमाल बहुत कठिन परिस्थिति में कर सकते हैं सेफ्टी की के लिए। पर उसके लिए आपको बहुत अवेयर होना होगा, आपका पर्स है, पर्स में अगर साइड में कोई ऐसा हार्ड मेटल को लटका के रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम लग रहा है, और आप उसको अगर सिर्फ फेंकती भी है तो अगर उस मेटल से चोट लगता है तो सामने वाला एक मिनट के लिए जरूर रुक जाएगा और आपके पास स्पेस मिल जाता है कि आप वहां से भाग सकती।
1: बिल्कुल,
0: तो ये है। रहा जब हम ट्रेवल करते हैं और होटल का चुनाव करना है या कहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ऑथेंटिक सोर्स को देखना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं, है ना, तो आप अब ऑनलाइन का टाइम आ गया है और सुनो शारदा पे आप जो भी लिसनर हमारे सुन रहे हैं तो साइबर सेफ्टी को देख रहे होंगे, तो उसके लिए सुना होगा। तो उन सब चीजों में हम हमेशा बताते हैं कि अगर साइबर में भी साइबर अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को सर्फ कर रहे हैं तो वहां पे देखें कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, गूगल की तरफ से क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वहां से एक होटल का डिटेल लें उस सिटी का।
1: अच्छा।
0: और अकॉर्डिंगली आप वहां पे संपर्क भी करें और सेम डिटेल आप किसी ट्रस्टेड एडल्ट को भी शेयर कर सकती हैं कि आप उस जगह पे हैं और यहाँ तक हैं और आपके जरूरत पे आपकी मदद की जा सकती है। पर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, अगेन, कि आप ये ना बार बार शेयर करें कि मैं अकेली हूँ,
1: अच्छा,
0: मुझे अच्छा रूम दो क्योंकि मैं अकेले ठहरने वाली हूँ, या मैं शहर में अकेली हूँ।
1: ओके,
0: नो, यू आर हियर बट यू आर, मतलब आपके साथ और भी सारे लोग हैं, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ रहें। या फिर कभी हेल्प भी लेना है तो कोई तंग कर रहा है और उसी होटल का सामने वाला बंदा कोई दिख रहा है तो उतने ही फ्रेंडली तरीके से बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें कि हो सकता है वो बंदा आपकी हेल्प भी कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो एकदम से वो अकेलापन का अनुभव लेकर के अकेले ना जाए।
1: ये भी हानिकारक हो सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए तो अब हमने काफी सारी बातें कर ली हैं, एक छोटी सी बात ये भी करनी थी कि लास्ट में आप थोड़ा सा एक तो मैसेज दे दीजिए कि आज इस प्रोग्राम के तहत क्या मैसेज हमारे सुनो शारदा के माध्यम से हमारे श्रोताओं को देना चाहती हैं, और साथ ही साथ अगर इस राज्य की बात करें या अलग अलग जगहों की बात करें तो उनके लिए हम किस प्रकार से पुलिस से सहायता ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। साकिब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तक तो हमने बात की वो सेल्फ की बात करी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। उसके बाद थोड़ा सा हमने रखा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या रखा, होटल कैसे ले, पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए, गाड़ी का नंबर रखना चाहिए, और इस तरीके की चीजें हमने बात। तो अभी हमने दो सेगमेंट को बहुत रखा कि अगर कहीं भी हैं तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस। अब जो तीसरी चीज है वो है सिस्टम की अवेयरनेस, मतलब सरकारी तंत्र है हमारी किसी भी परिस्थिति में हमारी हमारा मदद करने के लिए, राइट। तो जैसे 100 नंबर होता है, आपको इमीडिएट कुछ लगता है आप 100 नंबर पे कॉल कर सकती हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है कि 181, जैसे सुनो शारदा है यूपी दिल्ली, इस जगह पे हमारे लिसनर सुन रहे हैं तो उस जगह पे 1090 पे हम कॉल कर सकते हैं जो महिला हेल्पलाइन है, और वहां पे आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आप लोकेशन दे सकती हैं, आप कह सकती हैं मैं फलाने ऑटो में हूँ, एक नंबर भी आप दे सकती हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशन और ऑटो नंबर जस्ट बोल सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि द मोमेंट आप फोन पे बात करेंगी, हेल्पलाइन पे बात करेंगे, जो आपका परपरेटर्स है, मतलब जो तंग करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो ऑटो वाला हो या कोई मनचला हो, वो तुरंत सतर्क हो जाएगा कि ये लड़की पुलिस को कॉल कर दी है। तो या तो वो अपने इंटेंशन को चेंज कर लेगा, या आपके पास इतना समय मिल जाएगा कि आप उसको कह सकती है कि रुको और मैं आप एक्शन ले सकती हैं। तो स्टॉप एंड एक्शन के लिए आपके पास समय मिल जाता है, राइट। एक जो बहुत नंबर है जो महिलाओं को हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये नंबर है जैसे 269447544 है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स के लिए 2337057। तो ये सारे जो नंबर हैं उनको आप अपने पास रखिए, ताकि विषम परिस्थिति में जहां पे आप बिल्कुल 100 नंबर को, 181 को, 1090 को एक्सेस नहीं कर पा रही है, ऐसा जो बहुत रेयर है, तो और आपके साथ कुछ दुर्घटना घट चुकी है, इन लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और समय बहुत कम हो पा रहा है, तो आप पेरेंट्स जो है बिल्कुल कमीशन में शिकायत दर्ज करने से पीछे ना हटे। आप ये ना सोचे कि चलो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं अपनी बेटी के बारे में बोल दूंगी तो मेरी बेटी की बदनामी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आप इस कमीशन में अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा, ये एक बात है। दूसरी बात है कि लोग क्या कहेंगे के डर से आपने अपनी बेटी की तो क्षति कर ही दी, आप दूसरी की बेटियों को भी कहते हैं आप इसी परिस्थिति में जाओ। तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से मंचलों का जो हरकत हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि हम अपनी बेटी तुम नहीं संभालोगे तो हम दूसरे के बेटा को क्या संभालेंगे। बहुत सामान्य सी बात है, हम मदर्स बोलती हैं, हम अपनी बेटी को ना कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरे के बेटे को कैसे करेंगे।
1: सही बात है,
0: क्यों नहीं करेंगे, हमारी बेटी भी है और दूसरे का बेटा भी किसी का बेटा है, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटा बिगड़े या बेटी बिगड़े। उस सोच को पे चोट करने की जरूरत है।
1: सही बात है। तो ये था मैसेज
0: जी। उसके साथ मैं मैसेज पे आऊंगी, रूम टू रीड का रेडियो एपिसोड चलता रहता है, तो अगला एपिसोड हम लोगों का बुली पे भी आएगा, बुलिंग पे, और कैसे बदले गर्ल्स को बुली की समझ कैसे होनी चाहिए, तो उसको आप लोग जरूर सुनिए, और अगर उससे रिलेटेड कोई सा भी सवाल होता है तो सुनो शारदा के फोन पे, हेल्पलाइन पे आप कॉल कीजिए और हम लोग आपके पास आंसर के साथ आएंगे।
1: बहुत बड़ी जानकारी,
0: यस,
1: बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन पे जोड़ने के लिए, और बहुत सारी बातें की आपने। आशा करता हूँ कि आपकी दी गई जानकारी से हमारे श्रोता जो है वो लाभ उठाएंगे। आज हमने खासतौर से बात की जब आप सड़क या रास्ते पर पैदल चल रही हो तो किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते वक्त क्या करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में हो तो क्या करें, जब आप अकेले रात में टैक्सी या ऑटो ले रही हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा कर रहा हो तो क्या करें। अलग अलग राज्यों में उनके अपने फोन नंबर्स हैं, उनको आप अपने पास रखें और सुरक्षा की चीजें अपने पास रखें। घबराई ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें और पार्टी के दौरान सतर्क रहें, होटल में टिकने पर सावधानी बरतें। तो ये हमारे साथ आज साझा कर रही थी अंजना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओ, जाते जाते हमारी वो दो माध्यम नोट कर लीजिए जिसके जरिए से आप हमसे जुड़ते हैं और आप हमसे बातचीत करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तो हमारा वो दो माध्यम है, एक तो फोन के जरिए से और दूसरा इंटरनेट के जरिए से। तो हमारा फोन नंबर है 01204060205, मीन्स 01204060605, और हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। ईमेल एड्रेस एक बार फिर से सुनिए, 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट साकिब शेख को दीजिए इजाजत, बने रहिए सुनो शारदा पर अपने अगले प्रोग्राम के लिए। नमस्कार।
2: आज जहां नजर घुमाओ वहीं मन चले दिख जाएंगे, घर से लेकर कॉलेज और ऑफिस तक। ऐसे में माँ बाप के द्वारा बढ़ती सख्ती लड़कियों के दिल में और डर डाल देती है, ऐसे वो आगे नहीं बढ़ पाती, मनचले बैकी कदमों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में हमें बचकर रहना होगा, हमारी एक लापरवाही हमें मुश्किल में डाल सकती है। खासकर किशोरी उम्र में अगर देखा जाए तो ये उम्र नई चीजों को समझने और सीखने की होती है, पर हम ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इस उम्र में ही कदम सबसे ज़्यादा बहकते हैं। और जब बात इंटरनेट की आती है तो लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे में जो अच्छा लगता है वही सही लगता है। कई बार लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। चैटिंग ऐप्स से लेकर डेटिंग ऐप्स तक मनचले अपनी नज़र रखे रहते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि इंटरनेट विकास के उपयोग के लिए है, ना कि जाल बिछाने के लिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल इंडिया अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, क्योंकि देश में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में भारी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया है कि 2019 में साइबर अपराधों में 4,45,046 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में ये 28,02,048 था। ये सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेट का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। और किशोर उम्र में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया होता है। इंटरनेट में ऐसे नए अनजान लोगों को दोस्त बनाना, उनसे अपनी पर्सनल डिटेल साझा करना, ऐसी नादानियां होना आम बात है। हर जगह सोशल मीडिया में अपनी अपडेट्स डालना, इन्हीं सब चीज़ों की तलाश होती है मनचलों को। इसीलिए हमें बच्चों को इंटरनेट के दोनों पहलू समझाना चाहिए। अगर हम अपनी नज़र घुमाएं तो हमारे आसपास ही ऐसे मनचले दिख जाएंगे जो सिर्फ अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे में किशोरों को हर अच्छी लगने वाली चीज सही लगती है, तो उन्हें हर चीज के दोनों पहलू समझना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ भी करने से कम सोचेंगे। उनको समझना बेशक आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उनको कम से कम पता होगा कि वो किस राह में चल रहे हैं। कई बार उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। रिश्तेदारों ने छेड़खानी की या प्यार था उनका, किससे ये बात साझा करें। वैसे तो माँ बाप को ऐसी समझ बनानी चाहिए अपने और अपने बच्चों के बीच कि बच्चे उनको अपना दोस्त मान लें। कुछ भी सलाह या मन की बात करनी हो तो उनसे ही वो सबसे पहले करें। भारत में 86% यौन उत्पीड़न परिवार के सदस्यों जैसे भाई और चाचा, साथ ही पड़ोसी, नियोक्ता, सहकार्यकर्ता और दोस्तों द्वारा किया जाता है। 14,102 यानी 38% बलात्कार पीड़ितों की उम्र 18 वर्ष से कम थी। ऐसे में आपका अपने बच्चों के साथ कैसी समझ होनी चाहिए, आइए इस कविता द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, क्योंकि हम नहीं अनजान हैं। पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे पीछे खड़े हैं हम। बता दे जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे हमदर्द हैं हम। डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं, डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं। समझने वाला ये वक्त है आया, मुझे तू अपना दोस्त बना ले मेरे बच्चे। देख तेरे लिए मैं फ्रेंडशिप बैंड भी लाया। इस कविता के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक माता पिता को किस प्रकार से अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि वो बच्चे अपने माता पिता से हर एक बात साझा करें। अब चलिए सुनते हैं कुछ बहके कदमों की कहानियाँ। निखिल जो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, चलिए उनकी जिंदगी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं।
3: अरे यार राज, सड़क पर आज कोई फूल झड़े नजर नहीं आ रही।
2: हाँ यार निखिल, आज तो कोई दिखे नहीं रहा।
3: यार एक बात बता, क्यों ना हम ऐसे कर लेते हैं कि सड़क के लेफ्ट में जो लड़की जाएगी वो मेरी और राइट में जो जाएगी वो तेरी।
2: चल ठीक है, पर अगर कोई लड़की गुस्सा करेगी तो?
3: अरे यार ये लड़कियाँ हमारे लिए है ना, और हमारी नहीं होंगी तो किसकी होंगी।
2: चल ठीक है, बस इतना हंसने की कोशिश मत कर, इतना बता दे लड़कियाँ कहाँ दिख रही हैं यार।
3: देख, आई तो सही।
2: अरे हाँ वो रही।
3: अरे अंधे, अरे देख तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट वाली रोड में नहीं, राइट वाली में।
2: यार निखिल देख, उसे तू कुछ मत कहियो।
3: क्यों?
2: क्योंकि वो मेरी बहन है यार।
3: यार राज देख, डील तो पहले ही तय हो गई है। तूने ये कहा था कि जो राइट साइड से लड़की आएगी वो मेरी होगी।
2: पर यार निखिल वो मेरी बहन है।
3: देख मुझे कुछ नहीं पता, तूने तो पहले ही शर्त लगाया था, और अगर तेरी बहन की जगह मेरी बहन होती तो मैं खुशी खुशी हाँ कर देता।
2: हाँ ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। आगे क्या हुआ इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन क्या इससे भी बड़े मनचले हो सकते हैं? चलिए आइए इस दूसरी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं।
4: अरे भाई अमित, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है यार?
2: और नहीं तो क्या करूं यार, उस सोनिया ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए ठुकराया ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मना भी कर दिया यार।
4: अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि तुझे मना कर दे?
2: और नहीं तो क्या, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा यार, सबके सामने बीच सड़क पर।
4: क्या? और तू अभी तक हाथ पर हाथ रखे बैठा है अपनी इंसल्ट करवा के?
2: मैं तेरी जगह होता तो अभी तक उसे सबक सिखा चुका होता। यार मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे किस तरह से करूं और क्या करूं ऐसा कि जिंदगी भर याद रखे।
1: मनचले किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर बार अनजान ही हो, कई बार रिश्तेदार और टीचर्स भी हो सकते हैं, और यह भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ किशोरी उम्र के ही मनचले होते हैं। कई बार देखा गया है बड़े बूढ़े भी ऐसी तुच्छ हरकतें करते पाए गए हैं। ऐसे में परवरिश का एक बड़ा रोल है। समाज में पल रहे पनप रहे इस सोच को खत्म करने के लिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर।
5: नमस्कार, मैं हूं साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM।
1: और आपने दो ऐसे नाटक सुना जो ऑडियो नाटक था, जिसमें आपने खास तौर से मनचलों की बातें सुनी और किस प्रकार से वो लड़कियों को टारगेट करते हैं, किस प्रकार से वो लड़कियों के लिए अपने प्लान बनाते हैं और फिर उनको उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे साथ अक्सर देखने को मिल जाती है, हमारे आस पास में, पड़ोस में, मोहल्ले में, और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के समय में महिला के साथ लूट, छीना छपटी, छेड़छाड़, अपहरण, रेप आदि घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। महिलाएं सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, महिला हो या हाउसवाइफ हो, हर जगह उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा बना ही रहता है। इसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, और मार्केट में या ट्रेन में या ऑटो में या लिफ्ट में, गली मोहल्ले में मनचले या बदमाश लड़के को का जो छेड़छाड़ करना है वो जारी है। उन पर अश्लील कमेंट करना, अश्लील इशारे करना आदि रोजाना की लगभग आम बात सी हो गई है। बहुत सी लड़कियां रोज इन बदतमीजियों से तंग आकर या तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं या फिर डर कर कुछ कह नहीं पाती हैं, जिससे
2: ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ता है, हौसला बुलंद होता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में फोन के माध्यम से अंजना जी हैं, जो कि रूम टू रीड की प्रोग्राम एसोसिएट है। मैम बहुत बहुत स्वागत है।
0: थैंक यू सर।
2: हम आपको बता दें कि आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप सड़क पर हो, रास्ते पर हो, पैदल चल रही हो, तो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, हेडफोन इस्तेमाल करते समय किस प्रकार से समझदारी बरतें, आने जाने वाले रास्ते का चुनाव किस प्रकार से करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में किसी अजनबी के साथ अकेली हो तो क्या करें, और जब आप अकेले या रात में टैक्सी या ऑटो का सफर कर रहे हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा करे तो क्या करें। तो इसका क्या इलाज है समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं खोट है।
0: ये बहुत एक देखिए बहुत सामान्य सी बातें कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मन चले तो लोग, अगर आप किसी से भी बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे सोच के स्तर पर। तो हम क्या कह रहे हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। तो परिवार में देखें, घर में देखें, तो वो जो आप लड़कियों को तंग करते हैं उनको आपके पुरुषत्व से जोड़ा गया। अरे लड़के तो ऐसे ही होता है। अगर किसी लड़की को छेड़ दिया और लड़की ने को अगर उसने परेशान कर दिया तो उसकी कॉलर दूसरे लड़कों के बीच में भी खड़ी हो जाती है। तो एक तो इसका जो है हम कैसे इसका स्पेसिंग हो जाता है मन चले शब्द का, जो जितना एक कहना चाहिए ग्रीवियस या फिर जिस तरीके से इसका प्रभाव है हम उस तरीके से इसको देखते नहीं है। तो हम सामाजिक तौर पे मान के चलते हैं कि लड़के तो मनचले होते ही हैं और इसको हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम लड़की हो तो तुम्हें ही सब कुछ की जिम्मेदारी तुम पे है। तो अगर तुम्हें लड़का छेड़ रहा है तो तुम्हें ही कोई कमी होगी। लड़का अगर तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर वो कुछ भी बोले जा रहा है, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों नहीं हो, तो गलती लड़की की होगी। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि इस चीज को समझने के लिए मतलब हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इस शब्द को इतने हल्के से ना लें। अगर आपका लड़का है तो उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कि कितनी बार क्या होता है ना कि वो लड़के भी अनजाने में करते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता होता है कि इसका प्रभाव जिसको आप छेड़ रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है
2: जी।
0: और आप उसको अपने जो क्षणिक खुशी होती है या पुरुषत्व होता है उससे जोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम इस परिस्थिति में कि लड़के ही लड़की को छेड़ते हैं, या लड़कियां भी कभी कभी ऐसा आता है कि जगह होती है जहाँ पे लड़कियों का वर्चस्व होता है, तो देखा गया कभी कभी ऐसे होते हैं कि लड़कियों ने छेड़ दिया, विच इज वेरी रेयर, बट लोग बोलते हैं। तो हमें इस कल्चर को समझना चाहिए और इस पे उनका सेंसिटाइज करना चाहिए।
2: बिल्कुल आपने कहा ना, आपने बिल्कुल ये कहा कि जो हमारे अंदर ये मेंटेलिटी हमारे समाज की बन गई है कि अक्सर लड़की ही गलत होती है और लड़की को सबमिसिव होना चाहिए।
0: तो तुम ऐसे नहीं बैठो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, तुमने दुपट्टा नहीं ओढ़ा इसलिए लड़के छेड़ रहे।
2: हाँ, तुम्हारे कपड़े छोटे थे इसलिए छेड़ रहे।
0: तुम जींस पहनोगे तो होगा ही यही तुम्हारे साथ। तो खास करके ये जो एडोलेसेंट एज है, किशोरावस्था में इस तरह की पाबंदियां जो है वो लड़कियों पे बढ़ती जा रही है, और इसी तरीके का फ्रीडम जो है लड़कों को मिलता चला जाता है। रूम टू रीड अगर मैं संस्था की बात करूं तो हम लोग लाइफ स्किल पे काम करते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ स्किल कितना महत्वपूर्ण है एक एडोलेसेंट उम्र के लड़के और लड़कियों को समझने की। कि आपको उस चीज के लिए आपको जागरूक करता है, आपको सेंसिटाइज करता है, और आपको ये देखने का मौका देता है कि आपकी हरकत दूसरी जो आपका काउंटर पार्ट है जिसको आपने छेड़ा उनके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, उनको सामाजिक पाबंदी किस तरीके से लगाई गई, और परिवार के अंदर में भी किस तरीके से रोक टोक शुरू हो गई। ये तो एक है। दूसरी तरफ देखिए जो मनचला लड़का है उसको देखिए, उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है। आप छेड़ने लगे, आप उस छेड़ने के विशेष साइकिल में जा रहे हैं, तो आपका सेंसिटाइजेशन लो हो रहा है। तो आपके एक सामने वाला जिसको आप छेड़ रहे हैं या जो दुखी हो रहा है उससे आपको क्या हो रहा है, प्लेजर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव प्लेजर लेने लग गए, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी लगना चाहिए वो आपका डाइवर्ट हो गया और डिस्ट्रक्टिव माहौल में चला गया, एनर्जी की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं उस उम्र में अगर आपका पढ़ाई, आपकी अलग जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो पीछे रह जा रही है, और आप इस तरह की हरकतों में बढ़ते चले जा रहे हैं जिस वक्त में माता पिता बिल्कुल एहसास तक नहीं करते हैं। सही और है। जब उनको पता चलता है तो पता चलता है कि लड़का जो है या लड़की जो है वो तो जितनी वो सोचती थी समस्या उससे कहीं ज्यादा हो गई है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी। और तब उनको लगता है कि मैंने तो तुम्हें सारी सुविधाएं दी, मैं तुमको रोकी नहीं, मैं तुमको कहीं जाने से रोकी, मैंने पढ़ने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई और फिर भी जो है तुमने ऐसा किया। ये लड़का ने नहीं किया या लड़की पे जो आपने पाबंदी लगाया इन लड़की ने नहीं किया, ये पेरेंट्स के नेग्लिजेंस ने किया या पेरेंट्स के लैक ऑफ अवेयरनेस ने किया। तो इस परिस्थिति में तीनों का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, माता पिता का भी होना बहुत जरूरी है और लड़का व लड़की उनका भी अवेयरनेस, उनका भी सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है, तभी ये मनचले शब्द को भी हम जो है बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे।
1: जाहिर सी बात है, और हमने तो मनचले शब्द को समझ ही लिया है और साथ में हमने ये भी कॉन्सेप्ट जान लिया कि जो ये अवधारणा है हमारे और हमारे आसपास रहने वाले समाज में जो पेरेंट्स हैं उनको बदलनी होगी और अपने बेटों को सीख देनी होगी। अब हम ये बात करेंगे कि अगर इस तरह से हो जाए, क्योंकि अभी तो हमारा समाज इतना डेवलप नहीं है, तो लड़कियां किस प्रकार से अपना प्रिकॉशन ले सकती हैं जब आप सड़क पे चलें, रास्ते में चलें, पैदल चल रही हो तो क्या करें?
0: जी पहले तो जब वहां पे आते हैं ना तो सबसे पहले एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत होगी, लड़की अगर रास्ते में आप चल रही हैं और आपका कोई पीछा कर रहा है तो इसमें एक बात जो हमें मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि इसमें दो तरीके की परिस्थिति होती है। पहले तो जो आपको छेड़ रहा है या रास्ते में आपके पीछे जा रहा है तो आप पहले उसको श्योर हो जाइए कि सही में जो बंदा है वो छेड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है लड़की थोड़ा घबरा जाती है, एक्सपोजर का अभाव है या वो एक घर में डांट पड़ेगी लड़का तुमको छेड़ता है, तो अगर नहीं भी छेड़ता है वो जस्ट इमेजिन करती है, क्योंकि इसमें ना मीडिया का भी बड़ा रोल है। आप फिल्मों में देखे, सीरियल में देखे तो छेड़ने वाले लड़के का ना एक अलग टाइप दिखा दिया जाता है
1: जी।
0: तो अब अगर उस तरीके के लड़के या उस ड्रेसअप में लड़के आपको रोड पे दिखते हैं तो आप तुरंत सोचते हैं ये लड़का चेंगड़ा टाइप का होगा, मनचला है और ये छेड़ देगा मुझे, तो घबराहट में भी आप गलतियां कर जाती।
1: Exactly. तो सबसे सही सही सही बात हाँ।
0: तो सबसे जरूरी है इस जगह पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। आप रोड पे चल रही हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो जहाँ जा रही हैं, जिस कपड़े में हैं, जिस तरीके से चल रही हैं, वो आपका निर्णय है और आप इसलिए उस पर कपड़े में हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कम नहीं आके कि शायद मैंने आज जींस पहन लिया है, छोटा टॉप पहन लिया है, क्रॉप टॉप है, तो शायद मुझे लड़का इसलिए छेड़ रहा है और घर जाऊंगी तो मम्मी भी डांटेगी, तो घर से भी छुपा के मैंने पहना है। और ये तो आपका निर्णय है, आपने जो पहना है वो, या आप जिस जगह पे चल के जा रही हैं वो उस जगह के लिए आप खुद निर्णय लें कि वो जगह सही है, आप जो कर रही है वो सही है और आप उस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ये एक बात है। दूसरी बात है आप ऑब्जर्व करें थोड़े देर, मान लीजिए आप चल रही हैं और आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है तो थोड़ा सा तेजी से चलने लगी, क्या वो बंदा भी तेजी से चलने लगा? रास्ते मुड़ जाइए, लेफ्ट हो जाइए अगर आप फ्रंट जा रही हैं, और अगर कोई बिजी वाला जगह, भीड़ भाड़ वाला जगह लेफ्ट में है या राइट में है तो आप उधर मुड़ जाइए और देखिए वो सामने वाला बंदा भी जा रहा है। अगर वो सही में आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आपके ऊपर कोई कमेंट पास कर रहा है तो सबसे पहले यू स्टॉप, आप वहां पे रुकिए क्योंकि आप भीड़ वाले जगह पे पहुंच गई हैं। अगर शांत जगह में है उस जगह पे जाने की कोशिश करिए जहाँ भीड़ भाड़ है,
1: जहाँ पे लोगों का चहल पहल है,
0: लोगों का चहल पहल है, किसी दुकान पे रुक जाइए जैसे ग्रोसरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, उस जगह पे सबसे पहले आप वहां पे भी कह सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पीछे आ रहा है, तो आपको वो सपोर्ट मिल जा सकता है, ट्रस्ट हो सकता है। कोई महिलाएं अगर मिल जा रही हैं, अगर आप पुरुष के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो किसी फीमेल का भी आप सपोर्ट ले सकती हैं। किसी तो ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं होता है, तो सबसे पहले तो उस जगह पे जाइए। दूसरी बात है कि अगर वो सही में आप पे कमेंट पास कर रहा है या आपका पीछा कर, तो कॉन्फिडेंटली उसको फेस कीजिए।
1: Exactly.
0: और जहाँ हाँ आप वहाँ पे कहिए कि आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं वो गलत है और उसको आप फेस कीजिए। वो चीज है, आप जितना भागेंगी, आप जितना छुपेंगी, आप जितना डरेंगी तो आपको उतना ज्यादा तंग किया जाएगा और वो आपके पीछे उतना दौड़ेगा।
1: मुझे तो लगता है कि हेडफोन का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के उस वक्त करना चाहिए चलते समय। तो अभी तो हमने ये बात कर लिया कि आप सड़क या रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या करें, हेडफोन का इस्तेमाल करें, किस तरह से करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम लिफ्ट में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से समझदारी बरतनी है।
0: तो पहले तो पीछे वाले सिस्टम से ही आते हैं जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वहां पे आ गए कि पब्लिक प्लेस में आ गए। वहां से आप हेडफोन का अगर इस्तेमाल करें तो क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल इग्नोरेंट हो रहे हैं, आपको दुनिया का कोई एहसास नहीं, अपना मोबाइल में लगे हुए दोस्तों से बात करते हुए चले जा रहे हैं, तो आपके आसपास का आपको अवेयरनेस नहीं है, तो बेहोशी जो है वो आपकी समस्या का कारण बन सकता है। सेम वो हेडफोन अगर आप लिफ्ट में इस्तेमाल कर रही हैं, आप कहीं भी कर रही हैं, तो आप सबसे पहले अवेयर हों। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, पर पब्लिक जब आप चल रही हैं या बाहर हैं तो कोशिश करें कि हम इम्पोर्टेंट कॉल को ही लें और हम इसका इस्तेमाल नहीं करें। उसका सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता कि कोई आपको छेड़ रहा है, आप लिफ्ट में अकेली हैं तो आपको आपको दिखेगा नहीं कि कोई आपको गलत नजर से देखा, और आप अपनी दुनिया में व्यस्त है तो आपको नहीं पता। जब तक पता चलता है आपके लिए लेट हो जाता है, या बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो एक तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप लिफ्ट में हैं तो आपके लिफ्ट में मिरर होता है, तो आप 360 डिग्री जो है आप देख सकती हैं कि कौन है जो मेरे तरफ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझे ही देखा है। लिफ्ट में अलार्म बटन होता है तो आप उसको प्रेस कर सकती हैं, और आप ताकि जो गार्ड रूम होगा, कंट्रोल रूम होगा, वहां लोगों को पता चल जाएगा क्या परेशानी। तीसरी बात है, जिस फ्लोर पे आप हैं तो अमूमन 10 सेकंड लगता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, अगर हाइट सर्टेन हाइट होता है तो एक मिनट का मामला है, आप इमीडिएट जो अपकमिंग फ्लोर है उस पे उतर जाइए, वहां से उतर करके आप स्टेयर से नीचे की तरफ आइए जो गार्ड रूम का जगह है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जाएंगे हो सकता है वही आइसोलेटेड इन्वायरमेंट हो, तो वहां पे आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए, और उस जगह पे पब्लिक प्लेस में आकर के मतलब वहां पे अपनी चुप्पी को तोड़िए और वहां पे बोलिए कि आपको मदद की जरूरत है, हेल्प। ये जो होता है ना, स्टॉप रन एंड हेल्प,
1: यस,
0: हाँ, ये आपको करना चाहिए, एंड दैट इज विथ योर कॉन्फिडेंस। अगेन मैं कहती हूँ कि हमें स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, और उसको हम समझते हुए आप अपने एक्शन को लें, घबराएं नहीं बिल्कुल।
1: सही बात है। और जब हम अगर ऑटो में सवारी कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं तो, या टैक्सी हो, तो उस वक्त किस तरह से प्रिकॉशन लेना है?
0: जी बिल्कुल, ऑटो हो या टैक्सी हो, ये कि अमूमन प्रैक्टिस रखना चाहिए कि कितने नंबर का ऑटो से आप ट्रैवल कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है ना, जब हमारे साथ कोई समस्या होती है, कोई हमें छेड़ देता है, और तब अगर हम पुलिस स्टेशन में या 100 नंबर पे कॉल करके या हेल्पलाइन पे हम कॉल करते हैं, तो हमसे यही पूछा जाता है कि ऑटो का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है। ड्राइवर के पास ना एक नंबर होता है, उनका नाम के साथ नेम प्लेट होता है, तो आप हमेशा इस चीज को ले, या टैक्सी में भी जाए, कहीं भी जा रहे हैं तो टैक्सी का नंबर, ड्राइवर का नाम और उनके आईडी कार्ड को जरूर देखें।
1: अच्छा, ताकि अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कह रही थी आप।
0: हाँ, ताकि आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्लूनेस नहीं है। आप अगर ट्रेवल करें, आप अपना फोन नंबर या लोकेशन किसी और से भी शेयर कर लें फ्रेंड से।
1: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये तो है ही। अब हम बात ये कर रहे थे कि जैसे सुरक्षा की चीजें अपने पास रखने की हो, या फिर पार्टी के दौरान सतर्क रहने की चीज हो, या होटल में किस प्रकार से चुनाव करें, कहीं जैसे बस से जा रहे हैं, दूर का रास्ता है और बस खराब हो गई, बीच में होटल लेना है, तो किस प्रकार से हम उसका चुनाव करें, इन चीजों का कैसे ध्यान रखें हम, या पार्टी के दौरान सतर्क रहने वाली बात हो।
0: बिल्कुल, एक तो देखिए सेफ्टी किट होता है, तो आप अपना सेल्फ सेफ्टी किट जरूर अपने साथ रखें। बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है हमेशा निगेटिव है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी निगेटिव सर्कमस्टांसेस अगर हमारे लाइफ में आती है तो। तो बहुत सिंपल सी चीज है, चाबी का की होता है ना, किसी चीज की चाबी है वो आपके पास होनी चाहिए, अगर उस तरीके है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि चिली स्प्रे होता है, उस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके छोटी छोटी सेफ्टी की होती है, जैसे पेन है, पॉइंटेड है, पेंसिल है, जो आपके पर्स में होता है, होना चाहिए, तो आप उसका इस्तेमाल बहुत कठिन परिस्थिति में कर सकते हैं सेफ्टी की के लिए। पर उसके लिए आपको बहुत अवेयर होना होगा, आपका पर्स है, पर्स में अगर साइड में कोई ऐसा हार्ड मेटल को लटका के रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम लग रहा है, और आप उसको अगर सिर्फ फेंकती भी है तो अगर उस मेटल से चोट लगता है तो सामने वाला एक मिनट के लिए जरूर रुक जाएगा और आपके पास स्पेस मिल जाता है कि आप वहां से भाग सकती
1: हैं। बिल्कुल,
0: तो ये है। रहा जब हम ट्रेवल करते हैं और होटल का चुनाव करना है या कहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ऑथेंटिक सोर्स को देखना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं, है ना। तो आप अब ऑनलाइन का टाइम आ गया है और सुनो शारदा पे आप जो भी लिसनर हमारे सुन रहे हैं तो साइबर सेफ्टी को देख रहे होंगे, तो उसके लिए सुना होगा। तो उन सब चीजों में हम हमेशा बताते हैं कि अगर साइबर में भी साइबर अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को सर्फ कर रहे हैं तो वहां पे देखें कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, गूगल की तरफ से क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वहां से एक होटल का डिटेल लें उस सिटी का, और अकॉर्डिंगली आप वहां पे संपर्क भी करें और सेम डिटेल आप किसी ट्रस्टेड एडल्ट को भी शेयर कर सकती हैं कि आप उस जगह पे हैं और यहाँ तक हैं और आपके जरूरत पे आपकी मदद की जा सके। पर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है अगेन कि आप ये ना बार बार शेयर करें कि मैं अकेली हूँ,
1: अच्छा
0: मुझे अच्छा रूम दो क्योंकि मैं अकेले ठहरने वाली हूँ, या मैं शहर में अकेली हूँ।
1: ओके
0: नो यू आर हियर बट यू आर मतलब आपके साथ और भी सारे लोग हैं, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ रहें। या फिर कभी हेल्प भी लेना है तो कोई तंग कर रहा है और उसी होटल का सामने वाला बंदा कोई दिख रहा है तो उतने ही फ्रेंडली तरीके से बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें कि हो सकता है वो बंदा आपकी हेल्प भी कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो एकदम से वो अकेला बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें कि हो सकता है वो बंदा आपकी हेल्प भी कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो एकदम से वो अकेलापन का अनुभव लेकर के अकेले ना जाए,
1: ये भी हानिकारक हो सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए तो अब हमने काफी सारी बातें कर ली हैं, एक छोटी सी बात ये भी करनी थी कि लास्ट में आप थोड़ा सा एक तो मैसेज जो दे दीजिए कि आज इस प्रोग्राम के तहत क्या मैसेज हमारे सुनो शारदा के माध्यम से हमारे श्रोताओं को देना चाहती हैं, और साथ ही साथ अगर इस राज्य की बात करें या अलग अलग जगहों की बात करें तो उनके लिए हम किस प्रकार से पुलिस से सहायता ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल साकिब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हमने बात की वो सेल्फ की बात करी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। उसके बाद थोड़ा सा हमने रखा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या रखा, होटल कैसे ले, पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए, गाड़ी का नंबर रखना चाहिए और इस तरीके की चीजें हमने बात। तो अभी हमने दो सेगमेंट को बहुत रखा कि अगर कहीं भी है तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस। अब जो तीसरी चीज है वो है सिस्टम की अवेयरनेस, मतलब सरकारी तंत्र है हमारी किसी भी परिस्थिति में हमारी हमारा मदद करने के लिए, राइट। तो जैसे 100 नंबर होता है, आपको इमीडिएट कुछ लगता है आप 100 नंबर पे कॉल कर सकती हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है कि 181, जैसे सुनो शारदा है यूपी दिल्ली इस जगह पे हमारे लिसनर सुन रहे हैं तो उस जगह पे 1090 पे हम कॉल कर सकते हैं जो महिला हेल्पलाइन है, और वहां पे आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आप लोकेशन दे सकती हैं, आप कह सकती हैं मैं फलाने ऑटो में हूँ, एक नंबर भी आप दे सकती हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन और ऑटो नंबर जस्ट बोल सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि द मोमेंट आप फोन पे बात करेंगी, हेल्पलाइन पे बात करेंगी, जो आपका परपरेटर्स है मतलब जो तंग करने वाला व्यक्ति है चाहे वो ऑटो वाला हो या कोई मनचला हो, वो तुरंत सतर्क हो जाएगा कि ये लड़की पुलिस को कॉल कर दी है। तो या तो वो अपने इंटेंशन को चेंज कर लेगा या आपके पास इतना समय मिल जाएगा कि आप उसको कह सकती है कि रुको और मैं आप एक्शन ले सकती हैं। तो स्टॉप एंड एक्शन के लिए आपके पास समय मिल जाता है, राइट। एक जो बहुत नंबर है जो महिलाओं को हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये नंबर है जैसे 269447 है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के लिए 2337 0597। तो ये सारे जो नंबर हैं उनको आप अपने पास रखिए ताकि विषम परिस्थिति में जहां पे आप बिल्कुल 100 नंबर को 181 को 1090 को एक्सेस नहीं कर पा रही है, ऐसा जो बहुत रेयर है, तो और आपके साथ कुछ दुर्घटना घट चुकी है, इन लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और समय बहुत कम हो पा रहा है, तो आप पेरेंट्स जो है बिल्कुल कमीशन में शिकायत दर्ज करने से पीछे ना हटे।
1: बिल्कुल।
0: आप ये ना सोचे कि चलो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं अपनी बेटी के बारे में बोल दूंगी तो मेरी बेटी की बदनामी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आप इस कमीशंस में अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा,
1: जाहिर सी बात।
0: ये एक बात है। दूसरी बात है कि लोग क्या कहेंगे के डर से आपने अपनी बेटी की तो क्षति कर ही दी, आप दूसरी की बेटियों को भी कहते हैं आप इसी परिस्थिति में जाओ। तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से मंचलों का जो हरकत हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं।
1: सही बात।
0: इस सोच के साथ कि हम अपनी बेटी तुम नहीं संभालोगे, हम दूसरे के बेटा को क्या संभालेंगे। बहुत सामान्य सी बात है, हम मदर्स बोलती हैं, हम अपनी बेटी को ना कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरे के बेटे को कैसे करेंगे।
1: सही बात है,
0: क्यों नहीं करेंगे। हमारी बेटी भी है और दूसरे का बेटा भी किसी का बेटा है। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटा बिगड़े या बेटी बिगड़े। उस सोच को पे चोट करने की जरूरत है।
1: सही बात है। तो ये था मैसेज
0: जी। उसके साथ मैं मैसेज पे आऊंगी। रूम टू रीड का रेडियो एपिसोड चलता रहता है, तो अगला एपिसोड हम लोगों का बुली पे भी आएगा, बुलिंग पे, और कैसे बदले गर्ल्स को बुली की समझ कैसे होनी चाहिए, तो उसको आप लोग जरूर सुनिए। और अगर उससे रिलेटेड कोई सा भी सवाल होता है तो सुनो शारदा के फोन पे, हेल्पलाइन पे।

0: कॉल कीजिए और हम लोग आपके पास आंसर के साथ आएंगे।
1: बहुत बड़ी जानकारी,
0: यस,
1: बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन पे जोड़ने के लिए और बहुत सारी बातें की आपने। आशा करता हूँ कि आपकी दी गई जानकारी से हमारे श्रोता जो है वो लाभ उठाएंगे। आज हमने खासतौर से बात की जब आप सड़क या रास्ते पर पैदल चल रही हो तो किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते वक्त क्या करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में हो तो क्या करें, जब आप अकेले रात में टैक्सी या ऑटो ले रही हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा कर रहा हो तो क्या करें, अलग अलग राज्यों में उनके अपने फोन नंबर्स हैं, उनको आप अपने पास रखें और सुरक्षा कीजिए अपने पास रखें, घबराई ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें और पार्टी के दौरान सतर्क रहें, होटल में टिकने पर सावधानी बरतें। तो ये हमारे साथ आज साझा कर रही थी अंजना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं जाते जाते हमारे वो दो माध्यम नोट कर लीजिए जिसके जरिए से आप हमसे जुड़ते हैं और आप हमसे बातचीत करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तो हमारा वो दो माध्यम है, एक तो फोन के जरिए से, दूसरा इंटरनेट के जरिए से। तो हमारा फोन नंबर है 01204060205 मींस 01204060205 और हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। ईमेल एड्रेस एक बार फिर से सुनिए 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट साकिब शेख को दीजिए इजाजत, बने रहिए सुनो शारदा पर अपने अगले प्रोग्राम के लिए। नमस्कार।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: नमस्कार, मैं अजीत। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े।
2: ये विचार हमें भेजा था ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी और ममता बाई वर्मा जी ने। धन्यवाद आप सबका। और अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
3: अमरावती महाराष्ट्र से श्रीकांत तेलहारकर लिखते हैं, आपने अमेज़न और नील नदी के बारे में जो जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी
2: जी।
3: मैं आपका हर कार्यक्रम सुनता हूँ, मुझे आपका कार्यक्रम सुनने की आदत लग गई है। ऐसी जानकारी कहीं और नहीं मिलती। मैं आपके हर कार्यक्रम का इंतजार करता हूँ, धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। हम परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से आपका कार्यक्रम आकाशवाणी खंडवा के माध्यम से सुनते हैं और कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आपके कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारियां और कहानियां बेहद अच्छी लगती हैं। धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अगला संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी का। आपने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी व अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम हमें बेहद पसंद है, क्योंकि यह कार्यक्रम समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणाप्रद है। इसमें दी जाने वाली जानकारियां बहुत अच्छी हैं।
2: आप सबका बहुत बहुत आभार श्रोताओं। तो अजीत जी, अब
3: प्रस्तुत है हमारी आपकी
2: सबकी प्यारी श्रृंखला
3: ये भी जानिए।
2: ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बेहद लोकप्रिय सब्जी आलू का इतिहास जाना था
3: और आज हम इसी क्रम में जानेंगे एक और बेहद लोकप्रिय सब्जी टमाटर के बारे में।
2: तो हो जाइए तैयार और अब चलते हैं एक बेहद ज्ञानवर्धक यात्रा में। किसके साथ अजीत जी?
3: टमाटर के साथ।
2: बिल्कुल श्रोताओ, आलू के साथ साथ टमाटर के बिना भी हमारी रसोई अधूरी ही रहती है
3: जी।
2: तो आपको बता दें कि जैसे आलू मूल रूप से भारतीय नहीं है, वैसे टमाटर भी मूल रूप से भारतीय नहीं है। वैसे अजीत जी, पहले भाषा से संबंधित एक जरूरी बात कर लें।
3: जी जरूर।
2: श्रोताओ, सब्जी शब्द सब्ज शब्द से आया है। सब्ज का अर्थ होता है हरा। सब्ज शब्द फारसी भाषा से आया है। फारसी में सब्ज का अर्थ होता है हरा या हरा रंग। इसलिए जो भी वनस्पति खाने योग्य और हरी है उन्हें सब्जी कहते हैं। वैसे अब लोग सारी चीजों को सब्जी ही कहने लगे हैं, जो दरअसल विज्ञान और साहित्य के अनुसार गलत है।
3: तो आज हम बात कर रहे थे श्रोता और टमाटर की। टमाटर का मूल स्थान आलू के समान ही दक्षिण अमेरिका है
2: जी,
3: विशेषकर मेक्सिको, पेरू, बोलिविया और इक्वाडोर देशों में।
2: ये वहाँ की जनजातियों द्वारा उगाया जाता था। 16वीं शताब्दी तक नौकायन और समुद्री यात्रा बहुत उन्नत हो गई थी। उन दिनों यूरोप के नाविकों ने समुद्र के पार विभिन्न देशों की खोज की
3: और इसी क्रम में स्पेन के व्यापारियों और नाविकों ने दक्षिण अमेरिका की खोज की और वहाँ से टमाटर यूरोप में ले आए।
2: और यूरोप से टमाटर फैल गया पूरी दुनिया में।
3: माना जाता है श्रोताओं कि 16वीं शताब्दी में स्पेन के प्रसिद्ध नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस टमाटर को मेक्सिको से यूरोप लाए।
2: श्रोताओं, टमाटर का फल देखने में बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए यूरोप में इसे शुरू में सजावट के पौधे के रूप में उगाया गया, क्योंकि लोग मानते थे कि एक जहरीला पौधा है। लेकिन 1540 के दशक में इटली में टमाटर खाने का प्रचलन शुरू हुआ और इसे यूरोपीय भोजन पास्ता और पिज्जा में डाला जाने लगा।
3: जहाँ तक हमारे देश भारत की बात है, भारत में टमाटर 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों के माध्यम से आया
2: जी।
3: और धीरे धीरे यह भारत में इतना लोकप्रिय हो गया जितना किसी और देश में यह नहीं है।
2: श्रोताओ, टमाटर शब्द की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका की जनजातीय भाषा एजटेक के शब्द टोमेटी से हुई है। टोमेटी का अर्थ होता है फूला हुआ सुंदर फल। और अब एक वैज्ञानिक जानकारी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टमाटर एक फल है
3: जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टमाटर एक
2: फल है।
3: तो ये थी श्रोताओ हमारे प्यारे टमाटर की कहानी
2: जी।
3: क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि टमाटर भी भारतीय नहीं है?
2: बिल्कुल।
3: तो अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है,
2: टमाटर मूल रूप से किस देश की उपज है और ये भारत में कब आया?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, टमाटर मूल रूप से किस देश की उपज है और ये भारत कब आया?
2: हमारा IVRS नंबर है 8800404559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल पर अपना उत्तर भेज सकते हैं।
3: हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: जी, हम इंतजार करेंगे आपके संदेशों का। तो अब चलें कार्यक्रमों की ओर।
3: जी,
2: श्रोताओं, भारत की माटी ने एक से एक बढ़कर वीर बालिकाओं को जन्म दिया है। आइए चलते हैं उस काल में जब भारत आजाद नहीं हुआ था,
3: और पहुंचते हैं गुजरात राज्य के एक जनजातीय कबीले में। जनजाति है भील,
2: और सुनते हैं एक आदिवासी वीर बालक कालीबाई कलसुआ के बलिदान की रोमांचकारी गाथा, जिसमें गुरु भक्ति और देशभक्ति का अनूठा भाव मिला जुला है। तो सुनते हैं कार्यक्रम वीर बाला कालीबाई कलसुआ।
3: नमस्कार साथियों।
4: मेरा भी नमस्कार।
3: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
4: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
3: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
4: आप पूछेंगे, कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
3: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
4: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
3: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
4: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे, तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
3: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
5: अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो,
6: भारत माता की जय,
7: भारत माता की जय।
3: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
4: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
3: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
4: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
8: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
4: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
8: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
4: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
9: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो

0: नाना भाई से यह देखा नहीं गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई तुम्हें हमारा सलाम, सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। वीर बाला कालीबाई कलसुआ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: और श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्राचीन भारत के उज्जैन प्रांत के पराक्रमी सम्राट राजा विक्रमादित्य के जीवन के कुछ रोचक प्रसंग।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा ये बताया गया है कि एक राजा को दयालु और प्रजापालक होना चाहिए।

राजा था। वह बड़ा अभिमानी और सनकी था। एक बार उसने विक्रमादित्य बनने की सोची। मंत्री को बुलाकर कहा, राज्य के हर गांव, हर शहर में कुएं और धर्मशालाएं बनवा दो, ठंडे पानी का प्याऊ लगवा दो। मंत्री ने जगह जगह कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाईं। आकर राजा से कहा, महाराज काम पूरा हो गया। अगले दिन राजा वेश बदलकर घूमने निकला। जहां जाता वहीं पूछता, राजा बड़ा या विक्रमादित्य? हर कोई नाक चढ़ाकर जवाब देता, कहां राजा, कहां विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के राज्य में तो लोग कुओं में लोटा डालते तो शरबत निकलता था। राजा दरबार में आकर मंत्री से बोला, राज्य के सभी कुओं में चीनी डलवा दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन राजा फिर वेश बदलकर घूमने निकला। जहां जाता वहीं पूछता, राजा बड़ा या विक्रमादित्य? हर कोई कहता, कहां राजा, कहां विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के राज में तो सोने के सिक्के बांटे जाते थे। राजा ने दरबार में लौटकर मंत्री को आज्ञा दी, शाही खजाने से पूरे राज्य में सोने के सिक्के बंटवा दो। मंत्री ने ऐसा ही किया।

दूसरे दिन राजा वेश बदलकर राज्य में घूमने निकला। जहां जाता वहीं पूछता, राजा बड़ा या विक्रमादित्य? हर कोई जवाब देता, कहां राजा कहां विक्रमादित्य। राजा इस बात से बहुत दुखी हो गया।

जब वह घूमते घूमते थक गया तो एक तालाब के किनारे बैठकर आराम करने लगा। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे, चिड़िया चहचहा रही थी। राजा को पता नहीं कब नींद लग गई, वह सो गया। जब नींद खुली तो अंधेरा हो चुका था। वह घोड़े पर सवार होकर अपने महल को वापस जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे बहुत दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा, एक बुढ़िया रो रही थी। उसका एक पांव टूटा हुआ था, वह गिर गई थी। राजा ने उसे सहारा देकर उठाया, उसके पैर में कपड़ा लपेटकर अपने कंधे पर उठाकर घोड़े पर चढ़ाया और शाही दवाखाने में ले आया। जब वह बुढ़िया को ला रहा था, बुढ़िया ने कहा, सुना था राजा विक्रमादित्य के राज्य में सब दुखियों की सेवा करते थे, बड़ा न्याय होता था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। अब राजा के मन में बुढ़िया की बात बैठ गई। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, दीन दुखियों की सेवा का राज्य में निशुल्क पूरा प्रबंध करो। मंत्रियों ने ऐसा ही किया।

अब राजा जब राज्य में घूमने निकलता तो लोग चारों ओर राजा की जय जयकार करते।

0: सेवा करना।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा बड़ा या विक्रमादित्य।
2: आशा है श्रोताओं आपको हमारे आज के प्रसारित कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे। अब हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे,
1: तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारामारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
3: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। श्रोताओं, जीने के साधन इस धरती ने हमें कई रूपों में दिए और ये सभी साधन हमारे शरीर को या कहें पूरे जीवन को ऊर्जा देने का काम करते हैं। ऊर्जा यानी वो शक्ति जो हमें कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। पर ये ऊर्जा कहाँ से आती है? कौन है जो निरंतर इस धरती के जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा से शराबोर रखता है? आइए सुने सूरज सभी ऊर्जाओं का स्रोत।

0: क्या किया मानव तूने?
1: क्या किया मैंने?
0: सब कुछ खराब कर दिया। तू बस रुक, मैं अभी देखती हूँ तुझे।
1: विवेक भैया जल्दी आओ इधर प्लीज।
2: अरे क्या हुआ मानव, क्यों चिल्ला रहे हो?
1: देखो ना भैया, दीदी हमेशा मुझे डांटती रहती है और आज भी डांट रही है।
2: अरे तुम लोग शांति से नहीं बैठ सकते, तुम लोगों की वजह से मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। अब तुम लोग लड़ो मत यार।
0: देखो ना भैया, इसने मेरी पेंटिंग पर पानी गिरा दिया है। मैंने बहुत मेहनत से ये पेंटिंग बनाई थी।
1: बनाई थी पेंटिंग,
0: ये बाहर जाकर नहीं खेल सकता।
2: मानव बहुत गलत बात है।
1: क्या भैया?

0: तुम दोनों को बाहर भी नहीं भेज सकता, बाहर इतनी धूप है, बीमार पड़ जाएंगे। और फिर मम्मी पापा ने बाहर जाने से मना किया है। ऐसा करो मानव, तुम इससे दूर जाकर अपनी वाटर गन से खेलो, जाओ।
1: ठीक है दीदी। दीदी मुझे पानी दे दो ना।
2: तुम फिर मुझे परेशान करने लगे, अभी तो तुमने पानी पिया था। जाओ फ्रिज से खुद पानी ले लो, मुझे पेंटिंग बनाने दो।
1: अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ।
2: क्या किया, पानी गिरा दिया, गिलास से पानी भी नहीं पी सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा, इधर आ।
1: भैया भैया देखो ना, देखो दीदी मुझे मार नहीं आ रही है।
0: भाई तुम लोग थोड़ी देर तक आराम से नहीं बैठ सकते, अब क्या हुआ?
2: देखो ना भैया, इसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया।
0: अरे तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करते हो? चलो मानव तुम मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में चलो, और सृष्टि तुम यहाँ बैठ कर अपना काम करो। चलो चलो।
1: ठीक है।
0: भैया
1: आप कह रहे थे ना कि चिल्लाने से ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, लेकिन हमें ये ऊर्जा आती कहाँ से है?
0: मानव हमें ऊर्जा खाने से मिलती है, और यही ऊर्जा हमारे काम करने की क्षमता होती है। ठीक है
1: तो भैया इसमें चिंता की क्या बात है, मैं फिर से खाना खा लूंगा जिससे मुझमें फिर से ऊर्जा आ जाएगी।
0: मानव तो तुम फिर से सृष्टि को तंग करना शुरू कर दोगे, तुम नहीं सुधरने वाले। सोचो अगर तुम्हारी तरह सभी लोग इस तरह ऊर्जा बेकार करने लगे तो खाने की तो कमी हो जाएगी।
1: खाने की कमी? भैया क्या बात कर रहे हो, अभी यहाँ तो पूरी रसोई खाने की चीजों से भरी हुई है। अच्छा भैया ये बताओ कि खाने में एनर्जी कहाँ से आती है?
0: मानव तू नहीं मानेगा, सवाल पे सवाल किया जाएगा। ऐसा ऐसा करो चुपचाप खेलो तुम, मुझे कुछ काम करना है भाई, काम करने दो चुपचाप।
1: अच्छा ठीक है। भैया ये बताओ ना कि खाने में ऊर्जा कहाँ से आती है?
0: मानव सुनो, हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है? सब्जी, फल, दाल, चावल आदि। इसको खाकर हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि मिलते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा आती है, और ये सब पेड़ पौधों से मिलता है। इस सभी में ऊर्जा सूर्य से आती है, समझे? अब काम करने दो मुझे।
1: भैया भैया आपकी दीवार पर चिपकली।
0: मानव तो क्या हुआ भाई, चुपचाप काम नहीं करने दे सकते मुझे?
1: अच्छा भैया ये बताओ कि इस छिपकली में ऊर्जा कहाँ से आती है?
0: अरे मानव ये भी तो हमारी तुम्हारी तरह एक जंतु है, ये शाकाहारी ना होकर मांसाहारी है, और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरती है, जिससे उसे सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, समझे?
1: भैया देखो छिपकली तो गई, पर बड़ी छिपकली आ गई, सृष्टि दीदी। अब इसको यहाँ से भगा दो बस।
0: मानव दीदी से ऐसे बात करते? अब तू डांट खाएगा और मार भी, ऐसे बात करते अपनी दीदी से? सृष्टि तुम्हारी पेंटिंग पूरी हो गई?
2: अभी कलर किया है, सूखने के लिए रखी है।
0: अच्छा
2: मैं इस मानव की बातें सुन रही थी इसलिए यहाँ आ गई।
1: अच्छा
0: अरे बातें करना तो इसकी आदत है, बस एक ही सवाल के पीछे पड़ गया है कि जीव जंतुओं और पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है। अच्छा सृष्टि तुम ही बताओ कि जीव जंतु और पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है?
2: हाँ मैंने अपनी किताब में इसके बारे में पढ़ा तो है। हर प्राणी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, इस प्रकार शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर और मांसाहारी जीव दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं, है ना?
1: ओहो दीदी मैं और भैया इतनी जरूरी बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ गई तुम।
2: क्या कहा तुमने?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ तो भैया आप बताओ ना कि पेड़ पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है?
0: मानव तुम शोर मचाकर हमेशा अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हो, सृष्टि इसी के बारे में तो बता रही थी पर तुम सुनने को राजी नहीं हो। चलो मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ।
1: ठीक है।
0: पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। पौधे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करके ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं, और ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है, समझे?
2: इस क्रिया में क्या होता है भैया?
0: अच्छा एक काम करते हैं, बताने से पहले तुम दोनों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखोगे? चलो चलो चलो पहले बालकोनी में चलते हैं, चलो एक चीज बहुत बढ़िया चीज।
2: अरे भैया यहाँ तो बहुत धूप है।
1: अरे भैया आपको दिखाने वाले थे ना, दिखाओ ना।
0: देखो ना ये पौधा देख रहे हो? हाँ? ये पौधा सूर्य की रोशनी में रखा है, पापा इसे रोज पानी देते हैं इसीलिए ये हरा है। ये पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, पानी, हवा, मिट्टी की सहायता से बनाता है। वो सीढ़ियों पर रखा हुआ पौधा देख रहे हो, वो वाला?
2: हाँ भैया।
0: वो जो सूख गया है?
2: हाँ, हाँ।
0: वहाँ पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है और क्योंकि उसे किसी ने पानी नहीं दिया इसलिए भोजन ना बनने से ये पौधा सूख गया है।
1: बेचारे पौधे की रसोई में सूरज की गैस ही नहीं जली तो वह खाना कैसे बना पाता।
0: मानना, बहुत जल्दी सीख जाते हो तुम।
2: भैया, अगर इस तरह सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो हम सभी जीवों को भोजन की कमी होने से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अब मैं समझी, हमें ऊर्जा भी सूरज के कारण ही मिलती है।
0: वाह सृष्टि, वाह, पापा सही कहते हैं भाई। अब तो मैं भी कह सकता हूँ कि लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर, क्यों? हमारी ऊर्जा ही नहीं सृष्टि, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं की ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही तो है। अगर ये सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही ना होता।
1: पर भैया, एक बात समझ में नहीं आई।
0: वो क्या?
1: आप ये बताओ कि मेरा खिलौना कैसे कार्य कर रहा है, इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है और इसमें भी सूर्य की कोई भूमिका है?
0: मानव है भी और नहीं भी।
1: वो कैसे?
0: देखो मानव, तुम्हारा ये खिलौना बैटरी से चलता है, है ना? और बैटरी को तुम किससे चार्ज करते हो?
1: बिजली से।
2: और ये बिजली कहाँ से आती है?
1: बिजली घर से।
0: बिजली घर से तो हमारे घर तक आती है। बिजली बनती है कोयले, पानी की शक्ति, प्राकृतिक गैस या बायोमास इत्यादि से, समझे?
2: और इन सब में सूर्य की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भूमिका है।
1: पर भैया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला बनाने में सूर्य की क्या भूमिका है?
2: हाँ, ये सभी फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है।
0: कोयला और पेट्रोलियम आदि मरे हुए पौधों और समुद्री जीव जंतुओं से बने जो करोड़ों वर्ष पहले जमीन में दब गए थे।
2: और इतना तो तुम्हें पता ही है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी का ऊर्जा स्रोत सूर्य ही है।
1: हाँ, अब कुछ कुछ बात समझ में आई है।
0: वाह मानव, आई गई बात समझ में। अच्छा जरा देखो, दूसरे कमरों की लाइट तो बंद है, देखे आओ जाओ।
1: भैया, दीदी से कह दो ना, वो देख लेगी।
0: मानव, शशि तुम ही देख लो जरा।
2: हाँ भैया, मैं जाती हूँ।
3: देखो तो, बाथरूम और स्टोर की लाइट खुली है।
1: पर भैया, यहाँ तो अंधेरा रहता है, इन्हें तो जलने दो।
0: नहीं मानव, अगर जरूरत नहीं हो तो इसे बंद कर दो। हमें ऊर्जा को बचाने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें एक बात और बताऊं मानव, हमारे ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जरूरत इन पर भी बढ़ती जा रही है।
1: लेकिन भैया, सूर्य तो है ना, पेट्रोलियम और कोयले के भंडार भी बढ़ते रहेंगे।
0: अरे ऐसा नहीं है मानव, नहीं है ऐसा। कोयले और पेट्रोलियम के भंडार कम होते जा रहे हैं और वैसे भी इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं।
1: पर भैया, हमारी लाइट बंद करने से कितनी ऊर्जा बचेगी?
0: मानव, यदि हमारी तरह प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को बचाने की बात सोचे तो छोटी छोटी बचत से हम ऊर्जा के भंडारों को और अधिक दिनों तक चला सकते हैं।
2: कुछ समझ में आया मानव?
1: कुछ कुछ तो आया है। चलो छोड़ो दीदी, हम दोनों ना टीवी देखते हैं।
0: चलो चलो जाओ, तुम लोग टीवी देखो।
2: तुम टीवी चालू करो, मैं आती हूँ।
1: दीदी, अरे दीदी कहाँ रह गए तुम, जल्दी आओ, देखो मेरा मनपसंद कार्टून आ रहा है।
2: अरे आ रही हूँ ना। मानव, कार्टून बहुत देख लिया, जरा दूसरा चैनल लगाओ।
1: नहीं, मुझे कार्टून ही देखना है।
2: तुम हमेशा यही देखते हो मानव, मुझे रिमोट देता है या नहीं?
1: नहीं मैं नहीं दूंगा।
2: मुझे दे।
1: नहीं दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें नहीं देता रिमोट। और हाँ, मुझसे लड़कर ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो।
2: ठीक है, मैं जा रही हूँ, अकेले टीवी देखती हूँ।
1: हाँ।

0: सृष्टि सृष्टि देखना तो दरवाजे पर कौन है?
1: अभी देखती हूँ।
0: कौन है सृष्टि?
1: अब पोस्टमैन अंकल है।
2: बेटा सूर्य प्रकाश जी का पत्र है, क्या वो घर पे हैं? उनके इस कागज पर हस्ताक्षर चाहिए।
1: अच्छा अंकल एक मिनट। विवेक भैया।
0: हाँ।
1: पापा का पत्र है, इधर आना।
0: अच्छा नमस्ते अंकल।
2: नमस्ते बेटा।
0: कहाँ पर साइन करना है?
2: यहीं आप कर दो। ठीक है बेटा।
1: अच्छा अंकल, जब घंटी बजी थी तो आवाज निकली थी, ये भी तो विद्युत से जुड़ी है ना, तो विद्युत ऊर्जा का नुकसान नहीं हो रहा इस घंटी को बजाकर?
0: अरे मानव, अभी तक तुम्हारे दिमाग में ऊर्जा के ही सवाल चल रहे हैं क्यों? देखो घंटी का स्विच दबाने पर ही आवाज निकलती है, मतलब ये है कि जब जरूरत है तभी बज रही है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है।
1: तो जलते हुए बल्ब से कौन सी ऊर्जा निकल रही है?
0: बल्ब से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में बदलती है। अच्छा मानव, क्या तुम्हें मालूम है कि विद्युत ऊर्जा के हमारे घर तक आते आते ही 30% ऊर्जा का नुकसान हो जाता है?
1: वो कैसे?
0: वो ताप में बदल जाती है।
1: तो इसके हिसाब से एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है और ऊर्जा का क्षय नहीं होता।
0: बिल्कुल, यही तो वैज्ञानिक रूप से सत्य है।
1: कौन है?
3: हेलो बेटा, कैसे हो?
1: अरे पापा मम्मी।
3: हाँ बेटा। हाँ? जल्दी से पानी पिला दे।
1: हाँ। कितनी गर्मी थी बाबा।
3: हाँ हाँ हाँ भाई।
1: ये लो पापा पानी।
3: थैंक यू।
1: ये लो मम्मी।
4: ठंडा है बेटा?
1: हाँ जी।
3: हाँ आज बहुत गर्मी है, सूर्य गर्मी उगल रहा है भाई। अब सृष्टि और दिन भर आज क्या किया?
1: पापा मैंने एक पेंटिंग बनाई है, अभी लाती हूँ।
3: हाँ जरूर जरूर, जल्दी लेके आओ।
1: पापा ये देखो कैसी है।
3: अरे वाह, ये तुमने बनाई?
1: हाँ पापा।
3: अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब बाय द वे ये मानव और विवेक कहाँ है भाई?
1: विवेक भैया अपना होमवर्क कर रहे हैं और मानव उन्हें तंग कर रहा है।
3: एज यूजुअल।
1: लो ये भी आ गया। पापा सीढ़ियों पर रखे उस गमले को आप बालकनी में क्यों नहीं रखते? बेचारा सूख गया है।
3: अरे बेटा मैंने बहुत दिनों से उसे देखा नहीं है ना, वो सीढ़ियों पर ना चढ़ने के कारण मैं उसे पानी देना भूल जाता हूँ, घुटनों में दर्द होता है ना।
1: लेकिन पापा इसके अलावा वहाँ सूर्य की रोशनी भी तो बिल्कुल नहीं पहुँचती ना।
3: हाँ देख नहीं रहे हो, इसी सूर्य से तो परेशान हूँ, बाहर आग उगल रहा है, दिन में जाना कितना मुश्किल है। पता नहीं कब तक आग बरसाएगा ये।
1: पापा आपको मालूम है कि अगर सूर्य नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे।
3: अरे वाह वाह वाह मानव, तुम तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। ये सब तुम्हें किसने बताया भाई?
1: आज विवेक भैया ने मुझे ऊर्जा के बारे में बताया था।
3: अच्छा बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड।
1: लेकिन पापा ये सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है?
3: ये विवेक ने नहीं बताया। अब देखो बेटा मैं अभी बहुत थक गया हूँ, वो आज शाम को हमारे यहाँ साइंस क्लब वाले शर्मा अंकल आ रहे हैं।
1: अच्छा,
3: शाम को उनसे पूछ लेना।
1: फिर तो ठीक है, मैं भी खेलने जाता हूँ। ठीक है
4: ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना।
1: हाँ, हाँ, आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा।
3: वसुधा भाई मानव तो अच्छे अच्छे सवाल पूछने लगा है।
5: विवेक और सृष्टि के साथ रहकर होशियार हो गया है अपना मानव, और खुद भी कुछ न कुछ सोचता रहता है।
3: हाँ मुझे खुशी है कि हमारे तीनों बच्चे मेरे जैसे समझदार हो गए।
5: हमारे जैसे।
3: अच्छा ओके ओके।
0: पापा पापा कैसा रहा भाई, बाहर बहुत गर्मी है ना?
3: बहुत गर्मी है रे, पागल हो।
0: पापा आपकी ये चिट्ठी आई थी,
3: दिखाया। हो इस पत्र का इंतजार तो मैं 2 दिनों से कर रहा था।
0: अच्छा।
6: अरे इस समय कौन आ गया? आप देखिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ, कहीं काम वाली ना हो।
3: मैं देखता हूँ। अरे शर्मा जी आए हैं।
7: नमस्कार सूर्य प्रकाश।
3: नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए शर्मा
6: जी। नमस्कार भाई साहब।
7: नमस्कार भाभी जी। ये सब बच्चे कहाँ हैं?
1: हम यहाँ पर हैं।
7: अरे
3: अभी खेल कर आए हैं।
7: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: बैठिए ना
7: जी। शुक्रिया। हाँ तो बच्चों बताओ आज आप लोगों ने दिन भर में क्या किया खेलने के अलावा?
1: अंकल मुझे भैया और दीदी ने ऊर्जा के बारे में बताया।
7: अच्छा, तो तुमने ऊर्जा के बारे में क्या जाना?
1: यही कि सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है।
7: वेरी गुड। अच्छा, तुमने ये सोचा कि सूर्य में ये ऊर्जा कहाँ से आती है?
1: लेकिन भैया ने ये तो बताया ही नहीं।
7: अच्छा विवेक, तुम बताओ।
0: सूर्य का मुख्य ईंधन हाइड्रोजन है और इसके तापमान के कारण इसमें चलने वाली नाभिक

0: अधिक दबाव और तापमान के कारण नाभिकों का आपस में मिलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है।
1: ये क्रिया रोज होती है?
0: ये अभिक्रिया हमेशा चलती रहती है सृष्टि, और एक सेकंड में लगभग 42 लाख टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है।
2: पर अंकल, ये क्रिया कब से चल रही है?
0: ये करीब 5 अरब सालों से चल रही है विवेक, तभी से सूर्य प्रकाश देता आ रहा है, और जानते हो अगले 10 अरब सालों तक और चमकेगा।
1: और उसके बाद क्या होगा?
0: देखो मानव, जब ऊर्जा का स्रोत नहीं रहेगा तो इसके अभाव में सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। हाँ, सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन का भंडार हर पल कम होता जा रहा है।
2: अच्छा।
0: और जब ये भंडार समाप्त हो जाएगा तब सूर्य आज की तरह ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर सकेगा।
2: ओ,
1: तो क्या उस समय सूर्य नहीं रहेगा?
0: देखो मानव, हाइड्रोजन की आपूर्ति समाप्त होने पर वो फूलने लगेगा और उसका आकार इतना अधिक हो जाएगा कि वो पृथ्वी को निगल लेगा।
2: अच्छा।
0: और कुछ समय के पश्चात वो चमकना बंद कर श्वेत तारा बन जाएगा।
1: लेकिन अंकल, सूर्य अभी भी तो एक तारा ही है ना?
2: हाँ, वो तो अभी भी वो तारा ही है, लेकिन अभी सूर्य काफी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। श्वेत तारा बनने के बाद वो ऐसा नहीं करेगा।
1: अगर सूर्य तारा है तो बाकी तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते?
0: मानव, ऐसा है कि तारे तो हमेशा आकाश में रहते हैं, लेकिन सूर्य के अधिक प्रकाश के कारण वो हमको दिखाई नहीं देते।
1: अच्छा।
0: अच्छा सूर्य प्रकाश जी, अब चलता हूं।
3: बाय अंकल।
4: चलो बच्चों, खाने की टेबल पर आओ।
3: चलो। वैसे मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है?
4: जब टेबल पर आओगे तो पता चल जाएगा। आओ फटाफट।
3: चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। चलो।
4: ये रोटी लो सृष्टि।
3: वाह मम्मी, क्या खाना बनाते हो आप।
4: दाल खत्म करो जल्दी।
3: दाल।
5: अरे खाओ ना मानव।
3: अच्छा, वैसे पापा, कल रविवार है ना? मैं कल ना आपके साथ सुबह घूमने चलूंगा, ठीक है?
6: हाँ हाँ पापा, मैं भी।
5: पक्का?
6: पक्का।
5: ठीक है, कल सुबह देखते हैं।
3: ठीक है।
5: मानव, हे मानव, अरे उठो, घूमने नहीं चलना है
3: क्या? पापा सोने दो ना।
5: तुम तो कह रहे थे कि घूमने जाऊंगा।
3: अरे आधे घंटे बाद चलेंगे ना।
5: आधे घंटे नहीं रुकूंगा मैं, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं तो अभी जा रहा हूँ। हाँ
3: अच्छा ठीक है, मैं अभी उठता हूँ।
5: हाँ जल्दी करो, वरना मैं और सृष्टि जा रहे हैं।
3: नहीं नहीं, रुको, मैं भी आ रहा हूँ अभी।
5: सृष्टि जल्दी करो।
3: सृष्टि दीदी, जरा मेरी फुटबॉल भी ले आना, ठीक है?
5: अरे ले लेना सृष्टि।
3: अच्छा अच्छा, अब चलो ना जल्दी।
5: भाई सुबह का मौसम बहुत सुहाना है ना बच्चों?
6: हाँ सच में पापा, गनीमत है कि हमारे पास में ही ये सुंदर और बड़ा पार्क है।
5: हाँ भाई, पार्क तो हम लोगों के लिए वरदान है, वरना हम लोग शुद्ध हवा लेने कहाँ जाते?
3: बिल्कुल।
1: पापा मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ?
5: खेलने? हाँ जाओ, मगर देखो किसी से लड़ना नहीं है।
6: अच्छा ठीक है। हाँ। पापा थोड़ी देर वहाँ बेंच पर बैठते हैं, तब तक मानव अपना खेल खत्म कर लेगा।
5: हाँ गुड आइडिया। फूल कितने अच्छे लग रहे हैं।
3: बहुत सुंदर है ना।
5: गुलाब देखो ना कितना प्यारा। अरे ये मानव अभी तक नहीं आया, पता नहीं खेल रहा है कि लड़ रहा है। और ये देखो सूरज महाराज भी निकल आया।
6: और निकलते ही अपना कमाल दिखाने लगे।
1: हाँ। अरे दीदी, कमाल देखना था तो हमारा फुटबॉल का खेल देखती।
6: मानव दूसरा कमाल देखना है तो वो देख, लाल लाल आग का गोला देख।
1: वो क्या?
6: वो,
5: अरे वो देखना, वो सूर्य है देख। हाँ। कितना बड़ा, कितना लाल, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका रंग भी बदलता जाएगा।
6: पापा हमें सूर्य के अंदर का भाग क्यों नहीं दिखाई देता?
5: अब सृष्टि, आँखों से सिर्फ सूर्य का प्रकाश मंडल दिखाई देता है, अरे उसके अंदर केंद्र का तापक्रम बहुत अधिक है, इसलिए हम केंद्र को नहीं देख सकते हैं।
6: पापा सूर्य की सतह का तापक्रम कितना अधिक है?
5: बेटा उसके केंद्र में नाभिकीय प्रक्रिया के फलस्वरूप केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है।
1: इतना ज्यादा?
5: हाँ, और जो केंद्र से सतह की ओर आते आते करीब 6000 डिग्री सेल्सियस रह जाता है।
1: लेकिन पापा सूर्य के अंदर

0: और क्या क्या है?
1: कल अंकल ने बताया तो था, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में है। इनके अलावा यहाँ बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन और दूसरी गैसेस भी उपस्थित हैं।
0: पापा, क्या सूर्य भी पृथ्वी की तरह घूमता है?
2: हाँ, सूर्य भी अपनी धुरी पर पृथ्वी की तरह चक्कर लगाता है और एक चक्कर लगाने में औसतन 27 दिन का समय लगता है।
0: अच्छा।
2: हाँ, लेकिन ये स्थिर नहीं है। ये घूर्णन अवधि विषुवत रेखा पर तो 25 दिन और ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़कर 31 दिन हो जाती है।
0: ऐसा क्यों पापा?
2: बेटा, ऐसा उसकी संरचना के कारण होता है। अब देखो, तापक्रम अधिक होने के कारण सूर्य पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल अवस्था में नहीं है, सब कुछ गैस अवस्था में है। इसलिए सूर्य के विभिन्न भाग अलग अलग रफ्तार से घूमते हैं।
1: तो सूर्य गैस का गोला है। पर पापा, सूर्य बड़ा है या हमारी पृथ्वी?
2: बेटी, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,33,000 गुना अधिक है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसको ढकने के लिए हमारी पृथ्वी जैसी 109 और पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। खैर, चलो अब घर चलते हैं।
0: हाँ, चलो
1: चलो मानव, जल्दी घर चलो।
0: हाँ, मैं अपना सामान ले लूँ, एक मिनट।
2: हाँ चलो चलो, मैं फुटबॉल ले ले भाई, इसकी जल्दी से चिल्लाएगा शाम को।
3: देखता हूँ मम्मी। अरे आप लोग घूम भी आए?
0: हाँ।
3: सृष्टि, कौन से पार्क में गए थे तुम लोग?
1: अरे अपनी कॉलोनी में जो बड़ा पार्क है वहीं।
3: अच्छा भाई, बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने।
1: मानव फुटबॉल खेल रहा था और मैं पापा के साथ घूम रही थी। पता है, आज मैंने दिन में तारा देखा।
3: हट, मुझे पागल बना दिया क्या?
1: अरे सच में, सूर्य तारा ही तो है।
3: अच्छा, तो तुम सूर्य की बात कर रहे थे।
2: चकमा ले लिया तुमने।
4: चलो चलो, बाकी हंसी की बात है, खाने की टेबल पर करना, नाश्ता तैयार है।
2: नाश्ता तैयार है, चलो
0: चलो चलो।
2: मुझे बहुत भूख लगी भाई, नाश्ते का मजा आ रहा है।
0: बहुत टेस्टी है,
1: बिल्कुल।
2: एक बात है, तुम्हारी मम्मी नाश्ता बनाती बहुत अच्छा
4: जी। थैंक यू।
0: बिल्कुल गलत पापा, अगर आपको बढ़ाई करनी है तो सूर्य की करनी थी।
4: क्यों?
0: जिसकी वजह से हमें ये नाश्ता मिला है।
4: तो फिर मैंने बेकार में मेहनत करके इतनी ऊर्जा बर्बाद की सुबह से।
0: अरे नहीं मम्मी, आपको भी तो ऊर्जा उसी सूरज से मिलती है ना। आप उसकी आराधना करो और वो आपको और ऊर्जा देगा।
4: ये तो फिर से शुरू हो गया।
2: लेकिन वसुधा, कह तो ये बिल्कुल सही रहा है।
0: हाँ।
2: नाश्ते के लिए मुझे तुम्हारा नहीं बल्कि सूर्य का धन्यवाद करना चाहिए।
4: बिल्कुल करना चाहिए, और कल से उन्हीं से नाश्ता मांगना भी चाहिए।
2: अरे तो गड़बड़ हो गई भाई।
4: वहीं से मांग लीजिएगा नाश्ता।
5: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
1: ठान लो ये बात,
0: 5 खाद्य समूहों का मेल
1: कर देगा सभी बीमारियों को फेल।
0: जो ना खिलाया बच्चे को पौष्टिक आहार,
1: बच्चा हो सकता है बीमार।
0: शिशु को 2 से 3 चम्मच मसला हुआ खाना खिलाएं।
1: शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोले। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानी

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे

0: कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जंग के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त

0: या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अब्बा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: समझ जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
0: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
0: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
2: टीम तारा है तैयार।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण

0: हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या

0: टीवी प्रोग्राम बनने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड

0: एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

जाने हैं कहां, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली, कंपोजर्स माइकी मैकक्लेरी और सूरज कुलवडी, लिरिसिस्ट कौसर मुनीर। तू जाने हैं कहां, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला

0: ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
2: प्लीज।
1: थैंक यू।
3: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चों कौन हूँ मैं।
3: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प है। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और क्रैनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो,
2: क्या हाल? अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है, और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सबका समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
0: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है। अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है, जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: ये हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म

0: सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा, गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: अभियान।
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
2: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु,
1: धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले,
2: कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
1: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
1: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
0: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
1: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
0: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
0: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।